0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: चलते

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: सोमवार 10 अगस्त की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे हैं।
4: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
0: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सफर तो बरोबर एकदम सुहाना है लेकिन मौसम कल से बारिश हो रही है लेकिन मस्त मजा है और जब ऐसी बारिश हो रही है ना तो हम यही कामना करें कि भाई हमारे जो जितने रिजर्वर्स हैं जलाशय है वो भर जाए भाई सो यहां पर आपका दिल भरने के लिए विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपकी नीतू आपके पास वंस अगेन लेट मी विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग नया हफ्ता है नए दिन की शुरुआत नई सुबह की शुरुआत 5:05 होने वाले हैं सबको प्रणाम रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं एंड इस सफर में हमारे हम सफर बनने के लिए बिल्कुल तैयार सो 5499 1294 पर सैकत नफ नफ दूस नफ कात पर अभी तक नंबर वो ही छ बस चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है आप ही चेंज मत होइएगा जैसे भी रहें खुश रहें सलामत रहें और हमारी प्यार आप सब की दुआएं ब्लेसिंग्स हम सब पर रहे यही कामना करती हैं

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Old is gold. और बस ये गाने कभी पुराने होंगे नहीं. अभी आप लता जी और हेमंत कुमार की आवाजों में सुन रहे थे पतिता फिल्म का सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग. आपके नाम ऑन 5499 1294. लेट मी विश अ वेरी गुड मॉर्निंग. नमस्कार आपको ज्योति. और बस शत बिनास से हैं एज यूजुअल आशनी रेखा सुरेखा माधव परिवार हमारे लिए भी. ओ सो स्वीट. थैंक यू सो मच. अ वेरी गुड मॉर्निंग हर हर महादेव आपको. आप है भाई सूरज शर्मा सजादा त्रियोले से पूरे परिवार के नाम. प्रणाम रेडियो मस्ती. प्रणाम आपको भी ग्रीष्मो फ्लाक से. अगला गाना है माक्षी कुष्मिता लवना बीरमती आपके लिए मिस्टर जयशन. और बस आपका दिन एकदम शुभ हो मंगलमय हो यही कामना करते हैं. हर हर महादेव आपको भी अंजनी जी पूरे परिवार के नाम. एंड ओम नमः शिवाय. और श्रावण मास मंगलमय हो. शीला जी लेस्पेरेंस ट्रेबुशे से हैं. हाय नताशा नितुषा आपके साथ. आप कहती है प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू माय पापा अजीत चमन और लाल माची. ओ आज उनका बर्थडे है. सो ढेर सारी शुभकामनाएं बेस्ट विशेस आपकी मामा. उनकी पत्नी है अनीता पूजा प्रीतिशा आकाश शेम अवी लियो नायरा नवेश और सब परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. हैव अ नाइस संडे. संडे तो गया बाबा आज तो मंडे है. यानी कि चांद आनंद चंगादू अभी भी आप नींद में है. बेटे हैं बेटियां हैं सात ग्रैंड चिल्ड्रन सब परिवार फ्रॉम विल्डवा. हर हर महादेव आपको. माय नीसेस हैं कृति और किमी अभी शिवाला जा रही है. तो बस बम बम भोले का आशीर्वाद आपके साथ है. आपके भाई हैं संजीव बगन फुफू सुया बिहारी. आप रहते हैं कोंगोमा और सह परिवार के नाम. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी फ्रेंड नुशरिन के लिए. सभी फ्रेंड्स जो इस वक्त काम पर हैं फिलिंग स्टेशन में बोंकुआश टू यू टू अब्दुल एंड सायरा बानू. तो बस नेक्स्ट गाना आपके नाम सभी अपनों के लिए.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: मस्त गाने आपकी मॉर्निंग को एकदम लवली गुड गुड बना रही हैं, यही हम कामना करते हैं. सो 5499-1294 पर आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू. सुब ईश के नाम जो बड़ी प्यार से साथ निभा रही हैं. हाँ जी गुड मॉर्निंग, हम है बानो. एक बर्थडे गाना मेरी मामा के लिए जो रहती है बेलव्यू फा. ओके तो चलिए, उनका जन्मदिन है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं. रफी साहब शारदा की आवाज़ों में, यह गुमनाम फिल्म का सदाबहार गाना.

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: चलिए प्यार करने की बात चल पड़ी है तो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और दिल से आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे कि आप हमारे हमसफर बने रहते हैं चाहे वो सुबह हो शाम हो एनी टाइम रेडियो मस्ती आपके साथ 5499-1294 पर चले एक और बार आपके मैसेजेस की ओर बढ़ते हैं गुड मॉर्निंग कैसे हैं हर हर महादेव प्रेमिला जी प्रदीप पपाय से एन पति रंजीत के नाम आपके पूरे परिवार के लिए शीला जी मोका से हैं ओ आपका भी बर्थडे है आज हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से आपके पूरे

परिवार के नाम रेडियो मस्ती टीम नमस्ते. बर्थडे हैं आज मेरे पापा जीवन और वे आज 58 इयर्स के हुए हैं. सो आपकी तरफ से बेटी शिक्षाना, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं अभिषय, आरव, आहान, भाई हैं विक्रम, साथ में दामाद करण, शिक्षाना और मोहताबा से सब परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, हार्दिक शुभकामनाएं. नमस्कार जी. नेक्स्ट गाना गुजार टू ऑल दोस्त जो काम पर जा रही है, वो भी खास मेबर्ग मार्केट में, और गायत्री, माधवी, अनिल, श्वेतन और माया, शेजाद, मिलन, रोहन, रोशन, आरती, नारायण, सभी फ्रेंड्स को बों कुराज कहना चाहेंगे. थैंक यू सो मच. क्यों भाई, बस इट्स माय प्लेजर. आपका नाम आ गया, हम भी पढ़ पाए. थैंक यू सो मच टोनी जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग. आज आप कहते हैं कि काफ़ी अच्छा जो सुविचार है, शुगर एंड सोल्ट मे बी मिक्स्ड टुगेदर, लेकिन जो आंच है यानी कि चींटियां, वो नमक को रिजेक्ट कर जाती हैं, बस चीनी को ले जाती हैं. वैसे ही हम लोग जो चॉइसेस के आजू बाजू जो है सराउंडेड होते हैं एंड पॉसिबिलिटीज, बस ये हम पर निर्भर होता है कि हम सही क्या चुने, कौन से सही चुनाव कर सके और किन किन लोगों को हम चुन सके अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को मीठी और सक्सेसफुल बना सके. दैट्स सो स्वीट. यस, इस छोटे से सुविचार के जरिए आपने बहुत कुछ कहना चाहा है, तो बस जो भी आप करें, जो भी निश्चय आप ले, जो भी आप डिसीजन ले, सोच समझ कर ले. ओम नमः शिवाय. गाने एंजॉय कर रही है. थैंक यू. नमस्कार सरिता जी, आप हो फ्रॉम गुडलैंड्स. एंड नीतू नमस्ते, इंदिरा, रेशमा, विमल, अंजू, कृषा, केशव, नील, मायशा, तानिया, मोता ब्लॉन्च से. हाय जी, गुड मॉर्निंग, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. नीमा, जीवन फ्रॉम मोदाबिया, आप कैसे हैं? बस पति के लिए खाना तैयार कर रही है, ब्रेकफास्ट लंच, सो आप किचन में होंगे. बोंकोहाश एंड बारिश भी हो रही है जोरों की. अरे बाप रे बाप, मोदाल में जोरों की बारिश, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. हाँ, अगर आप उस ओर या फिर घर से निकलने वाले हैं, छाता, रेनकोट वगैरह जो भी हो, टेक ऑल योर प्रिकॉशंस. सो अगला गाना पति विशाल के नाम, बेटे हैं यादव, नीलेश एंड वीरेश. एंड टू आवर टीम, थैंक यू सो मच. नाम तो बहुत सारे आ रहे हैं. मैं प्यासा, तुम सावन, अमृता क्या बात है, फ्रॉम पॉइंट टू साबल. एंड गुड मॉर्निंग, और तेज और बारिश हो रही है, स्वागत है, चले केदारनाथ का शिव सॉन्ग हो जाए. मैं कोशिश करती हूँ, तब तक आप अगला गाना एंजॉय कीजिए.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: La la la la.
3: रोमांटिक एवरग्रीन सॉन्ग्स के साथ साथ बस थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप 5:41 हो रही है. गोइंग टू वर्क, बोको हाश, टेक केयर. हाँ, बारिश हो रही है. 5499-1294 पर आप हमें बता सकते हैं आप कहाँ हो. अगर जोरों की बारिश हो रही है या फिर मौसम सुहाना हो, यू माइट बी 9 5499-1294 पर.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: आप ही ऐसे ही गुनगुनाते चलिए, ला ला ला हो जो भी हो, लेकिन स्ट्रेस तो कम हो।
2: एरीज मेष राशि।
1: चलिए जी शुरुआत। कल जो तीखापन भाई बहन या आसपास के लोगों से बातचीत में महसूस हो रहा था, वो आज थोड़ा शांत होने लगेगा। बात कुछ ज्यादा समझदारी से हो पाएगी। मन में अभी थोड़ी हलचल रहेगी, पुरानी कोई उलझन आज सुलझ भी सकती है।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: वह धन और परिवार से जुड़े मामलों में दिन अच्छा रहेगा। कोई पुरानी आर्थिक उलझन आज सुलझ सकती है, बस उतावलापन मत दिखाइएगा। और यहाँ पर संतान या फिर प्रेम प्रसंग में जो है आपकी स्थिति की वजह से आज कुछ खुद को आप कोसने से बचाना होगा। जो हो रहा है उसे सहज लीजिएगा, बात को समझेगा और फिर आप उसको आगे ले जाएंगे। चॉइस इज योर्स, यानी कि दोस्तों और अपने सोशल सर्कल से आपको सहयोग सपोर्ट भरपूर मिलेगा।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: कल जो जोश और उत्तेजना आपके अंदर हावी थी, आज उसकी तीव्रता कुछ कम होने वाली है। कोई पुरानी उलझन आज गहरी समझ के साथ उलझ सकती है। भावनात्मक उथल पुथल महसूस हो तो तुरंत आप रिएक्ट यानी कि मत कीजिएगा, रिएक्ट मत कीजिएगा। पहले खुद को संभालिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए, फिर शायद कोई और आपको समझने की स्थिति में हो। जो भी हो धैर्य बनाए रखें।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज आपकी सोच और व्यक्तित्व में गहरा आकर्षण दिखेगा। यहाँ पर आपको कहा जाता है कि डिसीजन लेने की क्षमता तेज होगी और बात रखने का तरीका भी असरदार रहेगा। मन के भीतर कहीं कोई उथल पुथल महसूस हो तो घबराइए मत, ये किसी पुरानी उलझन से मुक्ति का संकेत भी हो सकता है। बस खर्च जो है बढ़ सकते हैं और आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करना जरूर सीखें।
2: लियो सिंह राशि।
1: दोस्तों या सामाजिक दायरे में आपके जिन बातों पर विवाद चल रहा था उसे ज्यादा

0: बेहतर तरीके से आज सुलझा सकते हैं आप। कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है या फिर जो आपकी जो कोई एनी प्रॉपर्टी कुछ भी रहा हो उसके मामले में आप काफ़ी परेशान दिख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो है प्रॉब्लम्स जो हैं सुलझने लगेंगे क्योंकि आप एकांत में समय बिताएंगे, मन थोड़ा शांत रहेगा और आप सही तरीके से जो डिसीजंस हैं वो ले पाएंगे। बस धन जो है खर्च करने के मामलों में आपको सतर्क रहना होगा एंड सेहत के मामले में भी नो लापरवाही।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: करियर के मोर्चे पर आज काम को लेकर सोच ज्यादा साफ और सुलझी रहेगी। कोई पुरानी उलझन भी सुलझ सकती है। दोस्तों और सामाजिक दायरे से आप जो है उनमें मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। खुद की छवि को लेकर मन में संशय हो सकता है। आपको लग सकता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका वहम जो है उसको दूर करना बहुत जरूरी है।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: धार्मिक कामों में आज शांति मिलेगी, मन को गहरी समझ मिलेगी। कोई पुरानी उलझन भी सुलझ सकती है। करियर के मामले में आज सोच काफी साफ रहेगी और बड़ों का मार्गदर्शन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बच्चे के प्रति आपका जो लगाव है वो दिख रहा है, बस उनके नीड्स उनके वांट्स के बारे में आपको जानना है। उनको ऐसे आप पैम्पर कीजिए, लेकिन हाँ सर पर चढ़ मत बिठाइएगा क्योंकि कब वो लोग यानी कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल और जो भी आप डिसीजंस लें उनके लिए सोच समझ कर ही लें।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: धार्मिक कामों में और रुझान बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंट रहना होगा। हाँ कोई पुरानी उलझन आज दूर हो सकती है, बस जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। दोस्तों की तरफ से जो पैसे की मदद आपको मिल सकती है और ये राहत की बात भी हो सकती है। लव लाइफ में आपको जल्दबाजी से बात बिगड़ सकती है, तो हर कदम जो है सोच समझ कर एक साथ आगे बढ़ाएं।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: जीवन साथी से बात जो है ज्यादा सुलझते हुए तरीके से हो पाएगी। पुरानी गलतफहमी भी दूर हो सकती है। उसकी कोई बात आपको गहरी समझ दे सकती है। बस अपने अहंकार को ईगो को आड़े में ना आने दीजिएगा, उसको आप रोक कर खुले दिल से सुने और बात करें। गुप्त या छिपे विषय सामने आ सकते हैं। करियर में थोड़ी सतर्कता जरूरी है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: रोजमर्रा का जो कामकाज यानी कि बेपटरी पर हो गया था आज वो दुरुस्त करेंगे। कोई पुरानी आदत छोड़ना या मानसिक उलझन को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए आज का दिन एकदम बेहतर है। बस काम करते वक्त हड़बड़ी ना करें। हाँ जीवन साथी या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आज सोच काफी साफ भी रहेगी।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। उसी की उपलब्धि से मन को राहत महसूस होगी। दिनचर्या को लेकर सोच साफ रहेगी और किन कामों को प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी से आप करना चाहेंगे ये तय आप कर पाएंगे। बस पुरानी आदतों में सुधार लाना फायदेमंद रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद रहेगा, उनका मार्गदर्शन और फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। अंत में आपके लिए कहा जाता है कि घर में माँ से जुड़े मामलों में आज आपके फोकस रहेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर आपसे हम बात कर रहे हैं अबाउट योर करियर, अबाउट योर लाइफ। कोई पुरानी बात आज सुलझ भी सकती है जिससे मन को राहत महसूस होगी। नेक्स्ट जो है जीवन साथी के साथ जो क्वालिटी टाइम आप बिताएंगे, आज तो मंडे का दिन है, अभी तो पूरा हफ्ता है, सो अपने काम पर फोकस कीजिएगा। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल बैलेंस मेंटेन कीजिएगा, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा एंड सबसे जरूरी अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा। विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड अ लवली डे अहेड।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
3: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
3: बस आप जुड़े हुए हैं रेडियो मस्ती के साथ डेफिनेटली, और 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। वेरी गुड मॉर्निंग आपको, लक्ष्मी गुडलैंड से है और मामा पापा को बहुत मिस कर रही है, भाई को, दीदी को, सबको बहुत मिस कर रही है। तो बस परिवार तो हम भी हैं, साथ निभाते रहिएगा।
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
6: North, South,
7: 103.5.
6: East, West,
7: 96.4.
6: Center,
7: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: 6 बजे हैं।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था। नमस्कार।
1: नमस्कार। 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कुछ खबरें जिन्हें हम विस्तार देंगे 6:30 बजे के समाचारों में। मॉरिशस में आज से पीने के पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां लागू। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के ड्राई सीजन रेगुलेशंस 2026 के तहत ये पाबंदियां 30 नवंबर तक लागू रहेंगी। देश के उत्तर में लानिकुलिया जलाशय फिलहाल करीब 83% भरा है। इरिगेशन अथॉरिटी का कहना है कि आने वाले महीनों में बारिश सामान्य से कम रह सकती है। वहीं गाड़ियों की धुलाई पर रोक से कार वॉश कारोबार भी प्रभावित हुआ है और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सरकार से सहायता की मांग की है। घरेलू जरूरतों के लिए पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए CWA भूमिगत जल नदियों और दूसरी जल धाराओं का भी सहारा ले रही है। मॉरिशस में महंगाई की दर बढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के मुताबिक सालाना महंगाई जून के 3.7% से बढ़कर जुलाई में 4.4% हो गई है। वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक महीने में 0.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सैनखुआ में आज सोने करीब 549 ग्राम ड्रग्स जब्त किए हैं, जिनकी बाजार कीमत 8.4 मिलियन रुपए से अधिक आंकी गई है। जांच जारी है। विदेश में पश्चिमी कनाडा में तेजी से फैल रही जंगल की आग के बावजूद आपातकालीन घोषित कर दिया गया है। आग करीब 136 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुकी है और 20,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर सामान्य हवाओं का असर जारी रहेगा। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान और शाम को भी देश में रह रहकर बरसात होगी। विशेषकर शाम को पूर्व और सेंट्रल प्लाटू पर वर्षा काफ़ी तेज हो सकती है। धुंध भी छाई रहेगी। रात को ऊंचे इलाकों पर वर्षा जारी रह सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। विशेषकर पूर्व और दक्षिण में समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 20 से 22, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त 5:55 पर।

0: ये ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती।
1: राइज एंड शाइन, स्टार्ट फ्रेश, स्टे शार्प, वेक अप विद द वर्ल्ड। वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती।
0: Hello Radio Master team, good morning. So let's start this new week with grace of God and love to achieve success and bless. Bas Kishan Rakhunath aapko Suriname se gana kehti hai, please meri lovely wife Mala, betiya hai Jia and Priya and whole Rakhunath parivar ke naam. Anusha Horiram plan de roche se hai papa Sasan, maa Premila, bhai Sanju, aapki bhabhi, aapke nephew niece, sab parivar ke liye. Happy 8th birthday to Princess Iyan Shirge Molavis of Grand Bay prastit रूमा रबीश परिशाल लव शादिया वांस की तरफ से उनको ढेर सारा प्यार एंड अबव द विशेस टू यू टू परी जूतन ऑफ डॉक्टर मनीलाल रोड मोसे मोसे तौंद्रे ब्लेसिंग्स पापा रवि माऊषा दीदी हैं उशी जूतन फैमिली दादी बसंती मामू सब परिवार की तरफ से आपको और हमारी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: छह बजकर 22 मिनट हो रहे हैं, 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन, उसके बाद विदिता के साथ वेल आपकी मॉर्निंग को एकदम बीट पर ले जाएंगे, वो भी 9 बजे तक हमारी और आपकी मुलाकात वैसे कल होगी हाँ, और दिन के 12 से 2 के बीच। लेट मी विश अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू 90s के जो फैन हैं, आप ही हो आकाश एंड मनसुख फैमिली, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच। बस आपके दिन की शुरुआत अच्छे से हो रही हो यही हम आशा करते हैं, एंड आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। जस्ट बी वेरी केयरफुल, मौसम काफ़ी ख़राब है, कई जगहों पर बारिश हो रही है, कोहरे छाए होंगे, रास्ते जो है स्लिपरी होंगे, सो बस टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। 5499-1294 पर कीप ऑन सेंडिंग मी योर मैसेजेस, किसी के नाम कोई पैगाम, बर्थडे विशेज फटाफट 6:30 बजे से पहले।

अपनों के बगैर क्या जीना भाई. हे अंजू लोहार, कैसी है माय डियर फ्रॉम मोंगू पॉपुलर मुसेस. गाना प्लीज मामा प्रेमिला गणपत जो रहती है वाकवा, क्योंकि आज उनका बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे टू यू मामा. हबीदेव राज, अंजू, नीलू, साथ में गणेश, दिनेश, शिवांश, बाबूराम परिवार एंड सुखराम गणपत परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. हे गोजस लेडी, मेरे को बोला थैंक यू सो मच. एंड केविन जा रहे हैं रोड्रिग्स. ओके, 8 बजे की फ्लाइट है, सो बो वायाज आपको. एंड बहुत मिस करेंगे आपकी लवली वाइफ बेबे. चलिए, आंखों से दूर होंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन दिल में तो करीब रहेंगे हमेशा, है ना. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, टू रीना, संजीता, कथ कोको से है गाना गुजार टू माई बेबीज. प्रत्युष, दुर्वान, श्रीना, माँ रेणुका, पापा मनोज, हर दयाल परिवार के नाम आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं.

0: सोमवार 10 अगस्त की सुबह ठीक 6:30 बज रहे हैं। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। ये नया दिन, ये नया सप्ताह हम सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। पानी की हर एक बूंद अब अहम, मॉरिशस में आज से पीने के पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल पर नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। ये नियम 30 नवंबर तक जारी रहेंगे। लानी कुलिया जलाशय फिलहाल सिर्फ 43% भरा हुआ है। मॉरिशस में महंगाई का दबाव बढ़ा है। सालाना महंगाई दर जून में 3.7% से बढ़कर जुलाई में 4.4% हो गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी एक महीने में 0.6% की बढ़ोतरी दर्ज। सनकुआ में आजसू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 549 ग्राम ड्रग्स बरामद किए। इनकी बाजार कीमत 8.4 मिलियन रुपए से अधिक आंकी गई। मामले की जांच जारी। विदेश में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की भीषण आग के बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। मॉरिशस में आज सोमवार 10 अगस्त से पीने के पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ड्राई सीजन रेगुलेशंस 2026 लागू करने की मंजूरी दी थी। ये नियम 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। देश में पानी का भंडार लगातार कम होने के कारण ये कदम उठाए गए हैं। रिपोर्ट शैली निर्बन और विवरण आशिता रघु का है।
1: अव्यवहारिक तौर पर पीने योग्य पानी के इस्तेमाल पर कई तरह के प्रतिबंध लागू होंगे। इसके तहत वाहनों को धोने, इमारतों, रास्तों और फुटपाथ की सफाई करने, लॉन, बगीचों और झाड़ियों में पानी देने तथा स्विमिंग पूल भरने या उसमें पानी बदलने पर रोक रहेगी। गन्ने की फसल की सिंचाई भी इन प्रतिबंधों के दायरे में होगी। हालांकि सब्जियों और अन्य बागवानी फसलों की सिंचाई बिना किसी प्रतिबंध के जारी रह सकेगी। उन लोगों के लिए भी एक छूट रखा गया है जिन्हें किसी जलधारा से कानूनी रूप से पानी लेने का अधिकार प्राप्त है। वे सिंचाई जारी रख सकेंगे, बशर्ते लिया गया पानी अन्यथा समुद्र में बहकर बर्बाद हो जाता। ये नई उपाय CWA की ओर से पहले से लागू किए गए उपायों के अतिरिक्त हैं। पिछले बुधवार से जल वितरण योजना के तहत पूरे देश में रोजाना पानी की आपूर्ति की अवधि 2 घंटे कम कर दी गई है। आंकड़े भी जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव को दर्शाते हैं। 4 अगस्त तक देश के प्रमुख जलाशयों में पानी का औसत भंडारण स्तर 61.7% था, जबकि 2025 में इसी अवधि में ये 72.7% था। यानी पिछले साल की तुलना में इस वर्ष जलाशयों में पानी का स्तर 31% अंक कम है। इस बीच ऊर्जा एवं पब्लिक यूटिलिटी मंत्रालय और सेंट्रल वाटर अथॉरिटी पिछले कई हफ्तों से जागरूकता अभियान चला रही है। इसका उद्देश्य लोगों को जलाशयों की मौजूदा स्थिति और पानी की खपत में कटौती की आवश्यकता के बारे में सचेत करना है।
0: पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियों के बीच इरिगेशन अथॉरिटी ने देश के उत्तरी हिस्से में पानी की स्थिति की जानकारी दी है। संस्था के इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च स्पेशलिस्ट रूपेश रामबर्न के अनुसार लानी कुलिया जलाशय फिलहाल करीब 43% भरा है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। उत्तर के इलाकों में पानी पहुँचाने वाले मिडलैंड जलाशय की स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन अधिकारी इसके पानी में को सिंचाई

0: में इस्तेमाल करने के बजाय घरेलू जरूरतों के लिए बचा कर रखना चाहते हैं। रुपेश रामबन का कहना है कि आने वाले महीनों में बारिश सामान्य से कम रह सकती है, ऐसे में अगला बरसात का मौसम आने तक पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करना जरूरी है। रुपेश रामबन से बात की हमारी सहयोगी शैली निर्बन ने, विवरण अशिता रखो।
1: À partir de lundi, l'irrigation, surtout dans le nord, va être restreinte en termes d'heure.
2: आज सोमवार से उत्तरी क्षेत्र के खेतिहरों के लिए सिंचाई तथा पानी के वितरण घंटे और दिनों की संख्या को लेकर सख्ती लागू हो रही है। प्राथमिकता सब्जियों की खेती को दी जाएगी, विशेषकर जो हाल ही में रोपे गए हैं, तथा गन्ने की खेतों की सिंचाई नहीं होगी, जो आज मंत्रालय के नियमों के अनुसार होगा। हम खेतिहरों और संबंधित उपभोक्ताओं के लिए एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिससे संसाधनों तथा पानी की बर्बादी न हो, लीकेज का मरम्मत पूरा करें तथा जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें।
0: पानी पर लगी पाबंदियों का असर खेती के साथ दूसरे कारोबार पर भी पड़ रहा है। पेनविलियंस में गाड़ियां धोने का काम करने वाले एक कारोबारी का कहना है कि वाहनों की धुलाई पर रोक से उनका कारोबार सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। वे मानते हैं कि देश में पानी की स्थिति गंभीर है, लेकिन उनका कहना है कि काम प्रभावित होने के बावजूद कई खर्च जारी रह सकते हैं। उन्होंने सरकार से इस मुश्किल दौर में इस सेक्टर से जुड़े लोगों को बेहतर सहायता देने की अपील की। उनसे बात की शैली निर्बन ने, अशिता रघु।
2: सरकार अब कौवाश सेंटरों के लिए नियम लागू कर रही है, हम समझते हैं क्योंकि स्थिति चिंताजनक है। हमें खाने पीने के लिए पानी को बचाना होगा, पर मैं एक पेट्रोल स्टेशन संचालक हूं और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे दो लोगों का वेतन करना पड़ता है, तो सरकार को इसके लिए हमें मदद करनी होगी, तभी हम स्थिति का सामना कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए भी अत्यंत ही कठिन हो जाएगी।
0: जैसा कि आप ही आपने सुना, पानी पर लगाई गई पाबंदियां केवल गैर जरूरी इस्तेमाल पर लागू हैं। घरेलू जरूरतों के लिए पानी की आपूर्ति बनाए रखने के मकसद से CWA दूसरे जल स्रोतों का भी सहारा ले रही है। इनमें भूमिगत जल, नदियां और छोटी जलधाराएं शामिल हैं। पानी की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए सरकार के मार्शल प्लान के 6 में से 2 हिस्सों पर भी काम चल रहा है। इनमें नए कुएं खोदना और पानी साफ करने के लिए प्रेशर फिल्टर्स लगाना है। याचना मिश्रा।
3: हमारे जलाशयों की स्थिति गंभीर। पिछले साल इसी अवधि में जलाशयों में पानी का स्तर 92% था, आज ये 61% है। देश के सबसे बड़े जलाशय महोबाक्वा में जल स्तर 39% है, वही बागातल दाम में 71%, जबकि पिछले साल ये इसी समय 94% था। पीने के पानी के हमारे अन्य स्रोत यानी भूमिगत जलाशय और नदियों में भी कमी आई है। 50% पीने योग्य पानी भूमिगत जलाशयों से ही आता है।
4: ₹630
3: जगहों पर खुदाई हुई है, लेकिन भूमिगत जलाशय का पानी यानी 50% घरेलू कामकाज के लिए जाता है। बारिश की कमी के कारण 25-30% कमी दर्ज हुई है।
4: En général, il y a une baisse à peu près de 25-35%.
3: जल योजना के तहत पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 6 नए भूमिगत जल स्रोतों की पहचान की गई है। नदियों के स्तर पर जल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए कंटेनराइज्ड प्रेशर फिल्टर्स लगाए जाएंगे, फिर भी अत्यधिक इस्तेमाल के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
4: La plupart nous bannent la rivière et nous bannent la phréatique. Je tenais une relation. Si vous pompez trop beaucoup, il y a un effet l'eau débit dans nous bannent la rivière.
3: ज्यादा पंपिंग करेंगे तो नदियों पर प्रभाव होगा। हम 24 घंटे पानी पंप करते हैं और फिर भूमिगत जल पर उसका असर देखते हैं। नदी और बोहोल को प्रभावित न करने वाली मात्रा ही पंप करते हैं और सीमाएं निर्धारित करते हैं और अधिकारियों को बताते हैं। मीटर देखकर पता चलता है कि इसका पालन हो रहा है या नहीं।
4: Là, nous pompons sa quantité là. Et ça, c'est nous mettre dans une limitation à n'importe qui, même la CWA, même privé, les autres besoins, obéir à sa restriction. Parce que nous finissons qu'on n'est pas bonne compter, etc.
3: Dunia bhar mein jalvayu parivartan aur El Niño

0: प्रभाव दिख रहा है। ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले हफ्तों में तेज बारिश का कोई खास अनुमान नहीं। ऐसे में पानी पर लागू प्रतिबंधों की अवधि 30 नवंबर से भी आगे बढ़ सकती है और जब पीने के पानी की उपलब्धि लगातार कम होती जा रही है, ऐसे में अधिकारियों ने सभी नागरिकों से सामूहिक जिम्मेदारी निभाने और पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की है।
1: मॉरिशस में जुलाई महीने में रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में 112.2 अंक से बढ़कर जुलाई में 112.9 अंक पर पहुंच गया, यानी एक महीने में 0.6% की बढ़ोतरी। इस बढ़ोतरी में शराब और तंबाकू की कीमतों का बड़ा असर रहा। इन सामानों पर बजट 2026-2027 के तहत 20 जून से नए एक्साइज ड्यूटी लागू किए गए थे। आशिता रखू।
2: जुलाई महीने में अल्कोहलिक ड्रिंक्स और तंबाकू की श्रेणी में 3.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बढ़ोतरी में तीन उत्पादों की प्रमुख भूमिका रही। सिगरेट, रम और विस्की ने मिलकर जुलाई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI में हुई मासिक वृद्धि का 71% हिस्सा तय किया। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी सिर्फ इसी श्रेणी तक सीमित नहीं रही। खाद्य पदार्थों की कीमतों में महीने के दौरान 0.3% की वृद्धि हुई। स्वास्थ्य क्षेत्र में 0.8% और शिक्षा क्षेत्र में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी नई एक्साइज ड्यूटी के प्रभाव के अलावा भी उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी में शामिल कई सामानों की कीमतों में जुलाई के दौरान इजाफा हुआ। पिछले 12 महीनों के औसत आधार पर महंगाई दर अब 4% पर पहुंच गई है, जबकि एक साल पहले ये 3.1% थी। महंगाई के अंतर्निहित रुझान पर भी नजर रखी जा रही है। खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों, तंबाकू और मार्जिन ब्याज को बाहर रखने वाला कोवान सूचकांक पिछले 12 महीनों के औसत आधार पर 2.9% से बढ़कर 5.1% हो गया है। ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब दूसरी तिमाही में भी महंगाई का दबाव देखा गया था। मार्च से जून के बीच CPI में 2.4% की वृद्धि हुई थी, जिसमें खाद्य पदार्थों और अन्य खर्चों की कई श्रेणियों में कीमतों में बढ़ोतरी का योगदान रहा। इसी तरह जुलाई में भी मासिक आधार पर कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही, लेकिन इस बार नई एक्साइज ड्यूटी के उपायों का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा।
1: देश में सालाना महंगाई की दर भी बढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ये जून के में 3.7% से बढ़कर जुलाई में 4.4% हो गई। जयन चलम के मुताबिक सबके पीछे यही कारण है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट से आयातित सामान महंगे हुए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई का खर्च, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और कुछ आयातित सामान पर इंश्योरेंस की बड़ी लागत का भी बड़ा असर पड़ा है। स्थानीय बाजार में दामों पर नियंत्रण के कारण कुछ सब्जियों के दाम में मामूली कमी आई है, लेकिन जयंत चलम का कहना है कि कई ऐसे सेक्टरों में खर्च बढ़ा है जहां दामों पर नियंत्रण नहीं है। इनमें शिक्षा, डॉक्टर की फीस, घरेलू गैस और बिजली शामिल है। जयंत चलम को सुनते हैं।
3: Maintenant, au niveau local, du fait qu'il paye la contrôle, les légumes ont baissé un petit peu, mais n'empêche que là, on prend l'île dans la totalité des autres facteurs qui nous guettent l'indice des prix. De ce panier, il y a la fréquence de montée, il y a aussi l'alimentation au-delà des légumes qui sont importés et la fin de passe fin de montée. Et la dipper est montée, l'électricité fait monter, et qui répercute les autres acteurs qui les revendiquent, parce que beaucoup de prix ne sont pas contrôlés, sur gaz et tout, ça qui est gaz, c'est pas contrôlé. Donc là, on prend tout ça. Il n'est pas étonnant qu'on gagne une marge beaucoup plus élevée d'une certaine manière, qui fait l'influence l'augmentation, taux annuel, taux d'inflation.
1: शुक्रवार को सैनक्वा में अनसुनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए। मेट्रो नोव की एक टीम ने एक बैग बरामद किया जिसमें ड्रग्स के 7 पैकेट थे। इनमें मुख्य रूप से हेरोइन थी, जिसे अलग अलग तरीके से पैक किया गया था। कुछ हेरोइन प्लास्टिक की थैलियों और प्लास्टिक की परत में रखी गई थी, जबकि इसे 175 एल्यूमिनियम फॉल भी छिपाया गया था। इसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स के दो पैकेट भी मिले। कुल मिलाकर करीब 549 ग्राम ड्रग्स जब्त किए गए हैं, जिनकी लागत है 8.4 मिलियन रुपए से अधिक इसकी आंकी गई।

0: है लागत जान जारी है। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रग्स कहां से आए और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। विदेश की खबरों में पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तेजी से फैल रही जंगल की आग के कारण आपातकाल घोषित शुक्रवार को शुरू हुई ये आग अब बढ़कर करीब 136 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुकी है और समरलैंड पीचलैंड समेत आसपास के इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पूरे ब्रिटिश कोलंबिया में अब तक 20,000 से अधिक लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। अधिकारियों के मुताबिक कई मकान और संपत्तियां आग की चपेट में आई हैं, हालांकि नुकसान का पूरा आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर सामान्य से अस्थिर हवाओं का असर जारी रहेगा। सुबह और दोपहर को देश भर में रह रहकर बरसात होगी। देर शाम को विशेषकर देश के पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर ज़्यादा बरसात हो सकती है और धुंध भी छाई रहेगी। रात को आसमान में बादल छाए रहेंगे और ऊंचाइयों पर वर्षा होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर उत्तर और दक्षिण और पूर्व में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम ऊंचे इलाकों पर बल्कि साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त 5:55 पर होगा। तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे कादिर, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं अभी के लिए शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: लाग्रिमों सेंपियमे 72 साल के 72 years old के बद्रया अपादू की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राजन अपादू के नाम से ज़्यादा जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 उनकी पत्नी माला अपादू के मकान सेंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्तों सेंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टूडे 1:30 PM ब्रांच रोड रौंसिली में 79 years old की देवरानी भैरव की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें धान के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके भाई धर्म भैरव के मकान ब्रांच रोड जोंची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोसों सेंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM वीरासामी रोड मूलें कासे सुरीनाम में 80 साल के 80 years old के दीपनारायण अराकी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें इंदर के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उन्हीं के मकान सोगी नाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुलिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 12:30 PM लामेरे स्ट्रीट ओकुले में 53 साल के 53 years old के श्री नीलकंठ कुमार गोविंद की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें केविन के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज उठाई जाएगी। समय के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। सैन फ्रांसवा जावियर स्ट्रीट पोर्टली में 90 years old की सफी सरीफुन्नेसा मोहंगा इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के 12 बजे उन्हीं के मकान पोटली से उठाकर अंतिम संस्कार बल्कि दफनाने के लिए बुआ मौशों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 12:00 PM बुआडवाजो ग्रोबियो में मोहम्मद ईशान अमीर अली इंतकाल कर गए हैं। लोग उन्हें दादा के नाम से अधिक जानते थे। उम्र

60 साल 60 years old उनकी अर्थी बल्कि उनका जनाजा आज रात्रि के 9 बजे उनकी मां रकीबा अकबाली के मकान गोबियो से निकाल कर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM तिवारी स्ट्रीट रोजपल में 87 ईयर्स ओल्ड की महालक्ष्मी गलचुला की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम अपादू लोग उन्हें पुष्पा के नाम से अधिक जानते थे उनके अर्थ आज दोपहर 2 बजे उन्हीं के मकान रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM लेस्पेरेंस ट्रिबुशे आनंद रोड में 57 ईयर्स ओल्ड के 57 साल की महालक्ष्मी पुनीत की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम सालांदी लोग उन्हें रेखा के नाम से अधिक जानते थे उनके अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उन्हीं के मकान ट्रिबुशे लेस्पेरेंस ट्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM स्कूल लेन कॉटेज में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की मानती भिकन की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम राम नारायण लोग उन्हें मानती के नाम से अधिक जानते थे उनके अर्थी आज दोपहर बाद 1 बजे उनके पति दीवानन बिकन के मकान कोटेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोटेज की ही शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM कनाडा लेन रोज लेन बाउंड्री ट्रेफ रोजिल में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मिनियामा इरापा की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम कॉपेन लोग उन्हें अति के नाम से अधिक जानते थे उनके अर्थ आज दिन के 12:30 बजे उन्हीं के मकान रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदगौद की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM रुते पंचू स्टैनले रोजिल में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की भवानी दिन तिलोटी की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम सम सनहुआ लोग उन्हें शर्मा के नाम से अधिक जानती थी उनके अर्थी आज सुबह के 10 बजे उन्हीं के मकान रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदगौद कॉलिव्यू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 10 AM गुडबासें कटरबोन में 89 ईयर्स ओल्ड के श्री अम्बिराव जयवंत सोनू की मृत्यु हो गई है वे पहले मेजिन शुगर एस्टेट में काम किया करते थे उनके अर्थे आज सुबह के 9:30 बजे उन्हीं के मकान कटोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM गिरिधारी रोड कटसोया में 76 ईयर्स ओल्ड के महेंद्र गिरिधारी की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज 1 बजे उनके बेटे कुशी वर्मा के मकान कटसोया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM ब्रांच रोड लालमाची में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड के श्री सुनीलाल रूपना की मृत्यु हो गई है लोग उन्हें सुनील के नाम से अधिक जानते थे उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी बबीता रूपना के मकान लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की शमशान भूमि ले जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 11 AM कनाल लेन पालमा कटरबोन में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के हीरालाल रामबन की मृत्यु हो गई है लोग उन्हें जीवन के नाम से अधिक जानते थे उनके अर्थ आज दिन की 1 बजे उनकी पत्नी वीना रामबन के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM नापोल बिजलोल के घर से बल्कि आले तमारें बॉम्बू में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ज्योति नापोल की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम ननकू लोग उन्हें चिमादाम के नाम से अधिक जानती थी उनके अर्थी आज दिन के 2:15 बजे आले तमारें बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताइन तमारें बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2:15 PM लातापी रोड बोनाक्योय में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के रामस्वरूप निरंजन की मृत्यु हो गई है

गई है। लोग उन्हें धर्म के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के पौने तीन बजे देवेंद्र रघु के मकान लातापी रोड बोनाक्यो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचियो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2:15 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

यकीन मानिए हर दुआ में, हर प्रार्थना में, हर चीज में, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर रास्ते में बस रेडियो मस्ती आपके साथ है। दैट्स फॉर श्योर। 6:56 नीतों के जाने का टाइम आ गया है। बस थोड़ी देर में वेदिता के साथ मॉर्निंग बीट, आपकी मॉर्निंग जो है एकदम लवली गुड गुड रहे, अच्छा दिन आप बीते। स्टे सेफ एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स। बाय बाय।

चलते चलते लेट मी विश हैप्पी बर्थडे टू शंकर मामू जो फ्रांस में है एंड आपके लिए मामा रति पापा किशन भाई लविश ओ चुस्वी एंड आपके लिए पूरे परिवार

0: भाई हम ये नहीं करते, हम तो करते हैं ये।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: A very good morning and welcome. सुबह के 7:05 हुए हैं, मंडे 10 अगस्त। देख लो अगस्त महीने में देखते देखते ऐसे ही दिन निकल गए। चलो भाई महीना यहाँ हमारा शुरू हुआ ही नहीं, ये खत्म होने को आ गया। तो आप सबों का हम वेलकम करते हैं, दो सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे, अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आज 10 अगस्त का जो दिन है बहुत से लोगों का खास दिन हो सकता है, तो चलिए इस खास दिन को स्पेशल बनाएंगे हम ऑन रेडियो मस्ती विनीता के साथ। ये है आपका मॉर्निंग बीट। तो चलिए अभी अपने स्ट्रेस को बीट करने का, अपने लेजीनेस को बीट करने का टाइम आ गया है और मॉर्निंग में हम आ जाते हैं अपने गीतों के साथ उन्हें दूर करने के लिए। सो वेलकम, आपका स्वागत करती हूँ मैं वेदिता, एंड साथ रहेंगे हम सुबह के 9 बजे तक। क्या पेश करें आपके लिए मॉर्निंग में। चलो भाई आप साथ हैं तो साथ देते रहिए। डोंट फॉरगेट टू सेंड इन योर मैसेजेस ऑन 5499912।

फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBI CC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल

0: भाई आपके भी हमारी जिंदगी में आने से हमारी भी जिंदगी में बात तो नहीं लेकिन कहानियां बन जाती हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन रेडियो मस्ती.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलो जी मॉर्निंग में अभी मौसम थोड़ा बेईमान हो रहा है. हाँ बारिश तो हो ही रही है लेकिन इस बरसाती मौसम में प्लीज़ बी केयरफुल जहाँ पर बारिश हो रही है. डेफिनेटली मुझे नहीं पता आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं. अगर आप यहाँ बारिश हो रही है तो आप लोग बस मुझे एक छोटा सा मैसेज भेज सकते हैं 1549 and 1294. ऐसे मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं बारिश की बात करी कहीं पर धूप खिली होगी. एंड यस गुड मॉर्निंग टू ऑल दोज जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है. सो आई होप कि आज का जो दिन है आज की जो मॉर्निंग है आपके लिए ज़बरदस्त रही होगी. ये जो आपके चेहरे पे टेंशन की झुरियाँ थी वो हट गई होगी. वो तभी होता है यू नो हमारी लाइफ से टेंशन तभी दूर होता है जब आप स्माइल करते हैं. जी हाँ स्माइल करोगे तभी तो ये झुरियाँ जाएगी वरना कैसे जाएगी. तो चलो स्माइल के साथ अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करो एंड अपने दिन में ठान लो कि जो होगा आज बहुत अच्छा होगा. इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट डे. ऐसा सोच के चलोगे ना तो सच में ये वर्क करता है. ट्राई तो करो.
2: RM2
3: Radio Musti.
2: Feel the musti.
3: In it, Sri Charso Bisa.

0: हमें तो मुड़ मुड़ के देखना पड़ता है पीछे कोई छूट तो नहीं गया।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: मजा तो साथ चलने में होता है, अकेले कहां। तो चलिए हम भी अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर चलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, मैं हूं वेदिता, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग बीट रेडियो मस्ती पर। अब चलिए देखते हैं कि किसका है आज बर्थडे। जी हाँ, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में से, आपके फ्रेंड सर्कल्स में से कोई है जिनका आज बर्थडे है, तो उनको हम सरप्राइज जरूर करना चाहेंगे। भाई, इंसान को क्या चाहिए इससे ज्यादा, एक अच्छी फैमिली जो आपसे बहुत प्यार करे, कुछ अच्छे दोस्त, खाने के लिए रोटी हो और सर पे छत हो, तो आप

से और कोई क्या कहते हैं रिच हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि वो दोस्त, वो फैमिली मेंबर्स जो आपके दिल के इतने करीब है, इतना प्यार करते हैं आपसे, आप उनके लिए कुछ करें आज। अगर स्पेशली उनका बर्थडे है तो क्यों नहीं। लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से हम सरप्राइज करने के लिए एकदम रेडी हैं। अगर आप रेडी हैं उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर हम तक पहुँचाने में, हमारा नंबर है 5499-1294। याद रखिए, जिनका बर्थडे है सिर्फ उनको विश नहीं भेजना है, उनका नंबर भी भेजना है हमें।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे स्टूडियो में धूप की जरूरत है क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं करता। मैं कहती रहती हूँ धूप धूप धूप, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोग समझते नहीं हैं जब मैं बात करती हूँ, है ना यार। मैं जादू नहीं हूँ, मेरे को जादू नहीं आता। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं आपसे कहूँ कि आप अपना जो जिस किसी का भी बर्थडे है, अगर आप उनका बर्थडे हमारे साथ लुलु हाइपर मार्केट की तरफ से स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, उनका फ़ोन नंबर भेजना होता है। उनका फ़ोन नंबर भेजना होता है और साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप मुझे उनका नाम भेजें। देखो यहाँ पर हम बर्थडे तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने नाम लिखा नहीं, तो मैं किसको कॉल करके हैप्पी बर्थडे गाऊँ।

0: रेडियो मस्ती।
1: और तो यहाँ पर मम्मी तारा बेचन जो हैं वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, शी इज 82 इयर्स ओल्ड। और ये मीरा की तरफ से उनको जो बोशा रहती है, उन्होंने कहा मम्मी का बर्थडे है लेकिन मम्मी का फोन नंबर तो भेजना चाहिए ना बेटा, ये तो आप गलत कर देते हो। इसमें से आज अभी किसी ने भी मम्मी का फोन नहीं भेजा, फोन नंबर नहीं भेजा, ना ही बेटी का भेजा।

0: लेकिन फिर भी हमने नाम के साथ आपका लकी ड्रॉ किया और यहाँ पर तारा जी का नाम आया है. सो प्लीज़ मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ जब आप लोग किसी को सरप्राइज़ करना चाहते हैं तो उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर, जिनका आप बर्थडे है जिनका फ़ोन नंबर हमें चाहिए कॉल करके सरप्राइज़ करने के लिए. आई होप इट्स क्लियर नाउ. तो आप प्लीज़ मुझे उनका नाम और उनके साथ साथ उनका फ़ोन नंबर ज़रूर भेजें.
1: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2.
2: Radio Musty.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: And yes guys, बस मंडे की ये बरसाती मॉर्निंग और ऐसे में हमारे दोस्त अरविंद आ गए हैं जी. बिल्कुल, हमारे बॉयज एंड गर्ल्स काफ़ी नाम रोशन कर रहे हैं हमारे देश का. तो चलिए, वॉलीबॉल हो या साइकिलिंग हो, हम अरविंद से जानेंगे कुछ मोर अपडेट्स. गुड मॉर्निंग अरविंद.
4: A very good Monday morning. आपको खेल समाचारों में आपका स्वागत है. The latest from the sports world. मॉरिशस के खेल जगत में एक और लाजवाब परफॉर्मेंस. मैडागास्कर में लगे अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हमारे लड़कों ने मैडागास्कर को फाइनल में 3-0 से हराया. सो अंडर 18 नेशंस कप में मॉरिशस के लड़के चैंपियन बने. बधाई हो हमारे जवानों को. बधाई साइकिलिंग की हमारी महारानी लुकू देबिये पिना को भी. टूर डे फ्रांस में ओवरऑल रैंकिंग में वो टॉप 10 में आई, 9th प्लेस. इस बार भी पिना ने एक स्टेज जीता. कल निस में 9वां चरण पूरा हुआ. इधर टूर डे ला रेन्यू में मॉरिशस का ट्रिस्टन आर्डी चैंपियन बना. 8 साल पहले क्रिस्टोफर लगान वहां चैंपियन बना था. इस बार आर्डी ने बाजी मारी. ट्रिस्टन आर्डी केवल 18 साल का है और इस उम्र में टूर डे फ्रांस का चैंपियन बनना मामूली बात नहीं है. मतलब मॉरिशस में साइकिलिंग का फ्यूचर, उसका भविष्य उज्जवल है. ब्रावो ट्रिस्टन आर्डी. क्लब फ्रेंडलीज में अनफील्ड रोड में मोनाको ने लिवरपूल को 3-2 से हराया. फर्स्ट हाफ में इसाक और वर्ड्स का एक ही गोल. लिवरपूल 2-1 से आगे था, पर लीड्स यूनाइटेड की तरह यहां भी सेकंड हाफ में लिवरपूल उलटफेर कर गया. मोनाको ने लिवरपूल पर 2 गोल स्कोर किए. नए मैनेजर इगाओला का पहला मैच अनफील्ड रोड में और एक हार के साथ. आखिरी 2 फ्रेंडलीज बचे हैं दोनों कुमो के खिलाफ. फिर प्रीमियर लीग शुरू. लिवरपूल की हार 3-2 से, वो भी अनफील्ड रोड में. सोचने वाली बात है. मैनचेस्टर सिटी 3

0: in Atletico Madrid 1, Omar Marmoush का डबल रहा 8, नूरी का एक गोल। ये मैच सेउल में खेला गया। प्रीमियर लीग चैंपियन आर्सेनल की हार हुई एमिरेट्स में। बोरुशिया डॉर्टमुंड ने आर्सेनल को 3-2 से हराया। चेल्सी ने अपना मैच ड्रॉ किया 3-3। डेलप का डबल, ये दानिल ताजिम टीम के खिलाफ है। स्कॉटिश प्रीमियरशिप में सेल्टिक ने 5-1 से किलमोनोक को पछाड़ा। हार्ट्स की जीत 4-0 से डंडी यूनाइटेड पर। मदरवेल 0, फाल्कर्क 0 और रेंजर्स की हार। हिबेनियन ने रेंजर्स को 2-1 से सुधारा। क्रिकेट, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले वार्म अप मैच में कल टीम इंडिया ने श्रीलंका 11 को 6 विकेट से हराया। श्रीलंका ने पहले इनिंग्स में 363 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 357 रन बना पाई। दूसरे इनिंग्स में 200 रनों पर श्रीलंका ने डिक्लेयर किया और टीम इंडिया 214 रन बनाकर मैच जीत गई। भारतीय टीम की पहली इनिंग्स में पदिकल 142 पर नॉट आउट रहा। मॉरिशस में रीजनल फुटबॉल, रोशनॉय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में रेड स्टार बुनाके 2, रेनबो ग्रांबे 1 और कल स्पोर्टिंग बॉयज ने 5-1 से आईएस रोशनॉय को हराया। क्रिकेट, आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा सीजन 4 मैच 6 का रिजल्ट, एपीपी लियोपार्ड्स ने एएमजे पैंथर्स को 2 विकेट से हराया। और सैटरडे मैच कॉन्टिनेंटल चीताज की जीत हुई 1/2 जागुआर पर 7 रनों से। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। सो खुशखबरी है, अंडर 18 वॉलीबॉल में हमारे लड़के चैंपियन बने और त्रिस्ता आज ही रेनियन टापू में जीत गया। बधाई हो सभी को, ऐसे ही खेलते रहो और हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। आले बोरिस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड, बाय बाय।
1: यस, थैंक यू अरविंद। वो खेलते रहेंगे और हम खुशी के मारे कूदते रहेंगे। राइट, 747 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती, आपका अपना मॉर्निंग बीट।
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Jumbo, Quality Déco, fin lance extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable, mais vrai. Bob, des pieds pas 100 roupies, des pieds pas 4 pieds pour 180.

आधा आधा समझ में आया ना भाई साहब ने क्या बोला। चलो इसी के साथ, कभी कभी लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता लेकिन फिर भी जिंदगी खूबसूरत है, चलते चलो बढ़ते हैं 8 बजे के भोजपुरी समाचारों की ओर।

0: 92 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: घड़ी मिलाते चलिए इस समय सुबह के ठीक 8 बजे हैं।

0: आज सोमवार 10 अगस्त से पीएओ लापानी के गैर जरूरी इस्तेमाल पर ही नवा रोक लागू हो गलबा। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के ड्राई सीजन रेगुलेशन 2026 के तहत ये रोक 30 नवंबर ले लागू रही। देश में पानी के भंडार लगातार कम होतबा यही के देखते ई कदम उठावल गलबा। देश के उत्तरी हिस्सा में पानी की स्थिति चिंता के विषय बनल बा। लानी कोलिया जलाशय अभी करीब 43% भरल बा, जो देश के औसत से काफ़ी कमती बा। मिडलैंड्स जलाशय की स्थिति बेहतर बा, बकिर एकर पानी सिंचाई के बजाय घर के जरूरत खातिर बचा के रखल जाता। आवे वाला महीना में वर्षा सामान्य से कम रही के आशंका बा। पानी पर लगल रोक के असर गाड़ी धोए वाला कारोबार पर भी पड़त बा। प्रिंस विलियम्स के में ई काम से जुड़ल कई गो कारोबारी लोगन सरकार से मदद के मांग करत हवन, जा उनकर कहना बा कि काम प्रभावित भइला के बावजूद कई खर्च जारी बा। घर के जरूरत खातिर पानी के सप्लाई जारी रखे खातिर सेंट्रल वाटर अथॉरिटी जमीन के नीचे के पानी नदी और दूसर जल स्रोत के सहारा लेत बा। सरकार के मार्शल प्लान के तहत नया कुआं खोदे और पानी साफ करे खातिर प्रेशर फिल्टर्स लगावे पर भी काम चलत बा। मॉरिशस में जुलाई में सामान के दाम में बढ़ोतरी दर्ज भइल बा। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में के 112.2 अंक से बढ़ के जुलाई में 112.9 अंक पर ही पहुंच गल, यानी एक महीना में 0.6% के बढ़ोतरी। शराब और तंबाकू के बढ़ल दाम के ई परी बड़ा असर पड़ल बा। देश में सालाना महंगाई के दर जून में 3.7% से बढ़ के जुलाई में 4.4% हो गल बा। एकरा पीछे डॉलर के मुकाबला में रुपया के कीमत कम होखल, विदेश से सामान लावे के बढ़ल खर्च और कच्चा माल के बढ़त दाम जैसन कई कारण बतावल गल बा। शिक्षा, डॉक्टर के फीस, घरेलू गैस और बिजली पर खर्च भी बढ़ल बा। शुक्रवार के सनख्वा में आलसु करीब 549 ग्राम ड्रग्स जब्त कर ले बा। ई में मुख्य रूप से हेरोइन शामिल बा, एकरा अलावा सिंथेटिक ड्रग्स भी बरामद भइल बा। जब्त नशीला पदार्थ के बाजार कीमत 8.4% रुपया से अधिक मिलियन रुपया से अधिक बतावल गल बा। जांच जारी बा। दूसरा देश के खबर में पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तेजी से फैलत जंगल के आग के चलते आपातकाल घोषित कर देवल गल बा। आग करीब 136 वर्ग किलोमीटर इलाका में फैल गल बा। समरलैंड, पीचलैंड और आसपास के इलाका से हजारों लोग के सुरक्षित जगह पर ही पहुंचावल गल बा। पूरा ब्रिटिश कोलंबिया में अबले 20,000 से जस्ती लोग के अपन घर छोड़े के पड़ल बा। कई घर और संपत्ति आग के चपेट में आ गल बा। दमकल की टीम आग पर काबू पावे में जुटल बा। तो ये रहल हमनी के भोजपुरी में समाचार, हमनी के सुनला जा। धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: भाई साहब ने इतनी बार पूछ लिया तो हम बोल देते हैं कि हम तो चलेंगे रेडियो मस्ती के साथ।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: A very good morning and welcome once again हमारी second hour में। Yes, सुबह के 8:08 हुई है 10th of August, विनीत आपके साथ और ये है आपका अपना प्रोग्राम Morning Beat on Radio Musti। I just hope you're doing good. Yeah, I know it's raining, but you can't call it a day. काम तो करना ही पड़ेगा। Come on guys, you can do it. Yes, you can do it. हाँ, पर एक मंडे ही तो है, और क्या है। जिस दिन आपने दिल लगाना सीख लिया इस मंडे के साथ ना, सच कहती हूँ आपको मंडे से प्यार हो जाएगा। You'll fall in love. ऐसा होता है, होता ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रही हूं, सच में ऐसा होता है। सो चलिए इसी के साथ आपके मंडे को हम स्पेशल बनाने के लिए कोशिश करते हैं। वैसे आज पूरे दिन मौसम कैसा रहेगा ये जानने के लिए मिलना होगा हमें आस्था के साथ। तो चलिए उनसे मिलते हैं, जानते हैं मौसम का हाल।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स,
3: ओनली टू विनर्स।
4: हमारे इलाके पर सामान्य हवाओं का असर जारी रहेगा। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान और शाम को भी देश में रह रहकर बरसात होगी। विशेषकर शाम को पूर्व और सेंट्रल प्लाटू पर वर्षा काफ़ी तेज हो सकती है, धुंध भी छाई रहेगी। रात को ऊंचे इलाकों पर वर्षा जारी रह सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। विशेषकर पूर्व और दक्षिण में समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 20 से 22, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त 5 बज

भाई बारिश हो और ऐसा गाना ना चले हो ही नहीं सकता। कहां से सुन रहे हैं बताइएगा जरूर ऑन 549 and 1294।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: जब मन बस में ना हो तो क्या करना चाहिए? तो बस से उतरकर कार में बैठ जाना चाहिए। सुबह के 8:14 हुए हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, स्वागत है आप सबों का। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तब शॉपिंग के लिए चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, शॉपिंग के लिए तो जाएंगे ना। तभी हम आपके लिए गेम लेकर आए हैं और मुझे लगता है कि आपका मन लग जाएगा। यस, ये है हमारा मॉर्चर शॉपिंग फेस्टिवल, ऑफकोर्स उत्सव इंडिया मॉर्चर शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC। 12 अगस्त से 16 अगस्त तक SBICC Pi में होने वाला है। सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक। द गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड। चलिए जी, 5 दिन में क्या करेंगे हम? शॉपिंग करेंगे, खाएंगे, पियेंगे, फैमिली के साथ मस्ती करेंगे। यहाँ पर लग रहा है इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है यहाँ पर। कोई और नहीं बल्कि इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन आ रहा है यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। और साथ में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आपको मौका मिलेगा, एक झलक तो ज़रूर देख पाएंगे आप बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर का, क्योंकि ये इनका स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है। और साथ में कानमा का शो होगा, ब्लड डोनेशन कैंप, फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड। बस मस्ती ही मस्ती होगी, और इस मस्ती में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो बस आपको मुझे ये बताना है। देखो भाई, हमने आपको धर्मेश सर के बारे में काफ़ी सवाल किए हैं, तो मैंने उनके बारे में बहुत कुछ जाना भी है, सवाल भी है। तो यहाँ पर 2018 में

0: वो एक और फिल्म में नजर आए थे एज एन एक्टर 2018 में. एज एन एक्टर वो एक मूवी में आए थे. आप मुझे मूवी का नाम बता दीजिए ऑन 5491294. अगर आपने सही जवाब दिया, क्या पता आपको मौका मिले इनाम जीतने का. आपको मिले ये चार एंट्री टिकट्स. जी हाँ, चार एंट्री टिकट्स और साथ में एक फूड कूपन फॉर द जेम्स लिटिल इंडिया शाही थाली. जैसे कि मैंने बताया था, उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल शुरू हो रहे हैं 12 अगस्त को. तो अगर आपको चाहिए तो आपको करना क्या है, जल्दी से मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए और ले जाइए इनाम.
1: मॉर्निंग बीट RM2 Radio Musti in the mix.

0: FM2
1: Radio Musty.
2: Communiqué de la CWA. Face à la baisse inquiétante de nos réserves en eau, de nouvelles mesures entrent en vigueur à partir du lundi 10 août 2026. L'utilisation de l'eau potable est désormais strictement encadrée. Interdiction de remplir les piscines, d'utiliser des nettoyeurs à haute pression ou de laver des véhicules avec de l'eau potable dans les centres de lavage. L'irrigation sera autorisée uniquement pour les champs de légumes. La police veillera à ce que ces restrictions soient respectées à la lettre. Ces mesures sont essentielles pour préserver notre eau aujourd'hui et pour les jours à venir. C'était un message de la Central Water Authority.
0: RM2
1: Radio Musty.
0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2
1: Radio Musty.
3: चलो भाई, यहाँ पर हमने आपसे सवाल किया था, काफी हमारा इजी सा सवाल था. आपको बताना था कि 2018 में 2018 में जो धर्मेश सर है वो एक और मूवी में नजर आए थे. आपको मुझे मूवी का नाम बताना था. तो पहले तो उन्होंने ए बी सी डी में काम किया था, एनीबडी कैन डांस. फिर 2015 में ए बी सी डी 2 आया. फिर उसके बाद 2018 में मूवी आई थी नवाबजादे. जी हाँ, नवाबजादे. और नवाबजादे में इन्होंने काम किया, उसमें पुनीत पाठक और राघव जुयाल भी थे साथ में. और आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. तो सही जवाब देकर विनर कौन बने हैं, चलिए ये जान लेते हैं कि किसने दिया हमें सही जवाब. सही जवाब देकर विनर बनी है जयंती दियाल. कंग्रेचुलेशंस. आप रहती है मोहतम ब्लाउश. आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. सही जवाब है नवाबजादे. और आपको यहाँ पर मिल रहा है एमबीसी और राजस्थान वर्क्स के साथ खेलने पर 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थालिया द उत्सव इंडिया मर्शर शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC जो 12 अगस्त से 16 अगस्त SBICC पाई में लग रहा है. और ये होगा सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक. तो एंटरटेनमेंट के साथ यहाँ पर शॉपिंग और फैमिली के साथ फन. साथ में यहाँ पर फूड फेस्टिवल भी हो रहा है. और जैसा आपने जवाब दिया यहाँ पर जो सही जवाब है नवाबजादे, तो मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर धर्मेश सर से आपको मिलने का मौका भी मिल रहा है, जो कि एक जज बन के आ रहे हैं यहाँ पर एक शो के लिए. तो बस आप ज़रूर इसे एंजॉय करें. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऑन रेडियो मस्ती. यह है आपका मॉर्निंग बीट वेदिता के साथ. सुबह के 8:25 हुए हैं और

0: और मैं आपको बता दूं जिन्होंने हमारा जो स्पोर्ट्स है अगर वो मिस कर दिया तो थोड़ी देर में हम फिर आपको मिलवाएंगे अरविंद के साथ. फिलहाल म्यूजिक का डोज जारी है ऑन रेडियो मस्ती.
1: मॉर्निंग बीट, ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: एंड यस, जितने भी हमारे दोस्तों ने हमारे स्पोर्ट्स मिस कर दिया था, 7:30 पे चलिए अरविंद से एक बार फिर मिलते हैं।
1: स्पोर्ट्स न्यूज,
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: एक बार फिर मिल लेते, एक बार फिर कहते हैं गुड मॉर्निंग अरविंद।
3: A very good Monday morning. आपको खेल समाचारों में आपका स्वागत है, the latest from the sports world. मॉरिशस के खेल जगत में एक और लाजवाब परफॉर्मेंस। मैडागास्कर में लगे अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हमारे लड़कों ने मैडागास्कर को फाइनल में 3-0 से हराया। सो अंडर 18 नेशंस कप में मॉरिशस के लड़के चैंपियन बने। बधाई हो हमारे जवानों को, बधाई साइकिलिंग की हमारी महारानी लुकू डेबिये पिना को भी। टूर डे फ्रांस में ओवरऑल रैंकिंग में वो टॉप 10 में आई, 9th प्लेस। इस बार भी पिना ने एक स्टेज जीता, कल निस में 9वां चरण पूरा हुआ। इधर टूर डे ला रेन्यू में मॉरिशस का ट्रिस्टन आर्डी चैंपियन बना। 8 साल पहले क्रिस्टोफर लगान वहां चैंपियन बना था, इस बार आर्डी ने बाजी मारी। ट्रिस्टन आर्डी केवल 18 साल का है और इस उम्र में टूर डे फ्रांस का चैंपियन बनना मामूली बात नहीं है। मतलब मॉरिशस में साइकिलिंग का फ्यूचर, उसका भविष्य उज्जवल है। ब्रावो ट्रिस्टन आर्डी। क्लब फ्रेंडलीज में अनफील्ड रोड में मोनाको ने लिवरपूल को 3-2 से हराया। फर्स्ट हाफ में इसाक और वर्ड्स का एक ही गोल। लिवरपूल 2-1 से आगे था, पर लीड्स यूनाइटेड की तरह यहां भी सेकंड हाफ में लिवरपूल उलट फेर कर गया। मोनाको ने लिवरपूल पर 2 गोल स्कोर किए। नए मैनेजर इराओला का पहला मैच अनफील्ड रोड में और एक हार के साथ। आखिरी 2 फ्रेंडलीज बचे हैं दोनों कुमो के खिलाफ, फिर प्रीमियर लीग शुरू। लिवरपूल की हार 3-2 से, वो भी अनफील्ड रोड में, सोचने वाली बात है। मैनचेस्टर सिटी 3 एटलेटिको मैड्रिड 1। ओबा मामूश का डबल रहा, 8 नूरी का एक गोल। ये मैच सेउल में खेला गया। प्रीमियर लीग चैंपियन आर्सेनल की हार हुई एमिरेट्स में। बोरुशा डॉर्टमुंड ने आर्सेनल को 3-2 से हराया। चेल्सी ने अपना मैच ड्रॉ किया 3-3। डेलप का डबल, ये दानिल ताजिम टीम के खिलाफ है। स्कॉटिश प्रीमियरशिप में सेल्टिक ने 5-1 से किलमोनोक को पछाड़ा। हार्ट्स की जीत 4-0 से डंडी यूनाइटेड पर। मदरवेल 0 फाल्कर्क 0 और रेंजर्स की हार, हिबेनियन ने रेंजर्स को 2-1 से सुधारा। क्रिकेट, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले वार्म अप मैच में कल टीम इंडिया ने श्रीलंका 11 को 6 विकेट से हराया। श्रीलंका ने पहले इनिंग्स में 363 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 357 रन बना पाई। दूसरे इनिंग्स में 200 रनों पर श्रीलंका ने डिक्लेयर किया और टीम इंडिया 214 रन बनाकर मैच जीत गई। भारतीय टीम की पहली इनिंग्स में पदिकल 142 पर नॉट आउट रहा। मॉरिशस में रीजनल फुटबॉल, रोशनॉय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में रेड स्टार बोनाके 2, रेनबो ग्रांबे 1 और कल स्पोर्टिंग बॉयज ने 5-1 से आईएस रोशनॉय को हराया। क्रिकेट, आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा सीजन 4 मैच 6 का रिजल्ट, एपीपी लियोपार्ड्स ने एएमजी पैंथर्स को 2 विकेट से हराया। और सैटरडे मैच कॉन्टिनेंटल चीताज की जीत हुई 1/2 जागुआर पर 7 रनों से। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। सो खुशखबरी है, अंडर 18 वॉलीबॉल में हमारे लड़के चैंपियन बने और ट्रिस्टन आर्डी रेनियन टापू में जीत गया। बधाई हो सभी को, ऐसे ही खेलते रहो और हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। अली बोरिस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड, बाय बाय।
0: थैंक यू अरविंद, थैंक यू सो मच।
1: RM2
2: Radio Musti.
4: Paris pour plus grand festival shopping, Outsub, India Mauritius Shopping Carnival, powered by

0: पिछले 7 दिनों में ये सब है खोया।
1: दोस्तों हम जानते हैं कि आज मंडे है और मंडे में क्या होता है ना कि सबका चेहरा थोड़ा थोड़ा उतरा होता है। पता नहीं क्या सोचते रहते हो आप। पता है खुश रहने के लिए जिंदगी का परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस जो मिला है उसी में खुशी ढूंढना सीखो। सुनो मेरी बात, जिंदगी में हर दिन हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होता। कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी डिसअपॉइंटमेंट्स, और कभी चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं। लेकिन खुश रहना सर्कमस्टेंसेस पर नहीं, हमारी सोच पर भी डिपेंड करता है। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो, इसका मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच में छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करो। एक पीसफुल मॉर्निंग, किसी अपने की स्माइल, अपनी मेहनत पर प्राउड फील करना, या बस एक सुकून भरा पल, इन्हीं छोटी चीजों में लाइफ की असली ब्यूटी छुपी हुई।

होती है। जो नहीं है उसका गम ना करो, जो है उसकी कदर करो, खुशी मिलने का वेट मत करो, खुशी को खुद चूज करना सीखो। बस खुश रहो, मुस्कुराओ और अगर खुशियां ढूंढनी है तो हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि ये है आपका अपना रेडियो मस्ती।

Mixing. RM2, Radio Musty, in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: Guys, it's 8:48 और आप विनीता का साथ दे रहे हैं आपके अपने मॉर्निंग बीट में. और चलिए, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने मैसेज भेजे हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जी. चलिए तो नेक्स्ट गाना हम यलेश के नाम डेडिकेट करते हैं और वहीं पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी सारे हमारे प्यारे प्यारे दोस्त. कमला जी नमस्ते, कैसी हैं आप? सब बढ़िया, सब ठीक, अच्छा है. चलिए यहाँ पर हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं यजना को, जो त्रियोले से हैं और ये हैं उनकी मदर इन लॉ जिन्होंने उनको याद किया. और साथ ही साथ यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना जो है रविशु आदर्श दिलंबर के नाम डेडिकेट करते हैं, वो 18 साल के हो गए हैं. और वहीं पे हम विश करते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल दोज जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, जैसे कि शंकर मामू जो कि फ्रांस में हैं, उनको बहुत सारा प्यार है. और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट गाना हबी किविन के लिए, और यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे टू मामा रति, पापा किशन, भाई लवीश और जसवी, सभी हैं पुत्र दोस्त से. और यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेज आए हैं. यहाँ पर हमारे साथ हैं कौन, अंजू उदित जी, हाँ आपके लिए गाना होगा. और वहीं पे हम ननद का बर्थडे आपने लिखा है अंजू, अच्छा ये है प्रिश्मा की तरफ से. और राइट, तो कमलजीत को भी हम कहेंगे गुड मॉर्निंग दीपक, आप सभी के लिए हमारा नेक्स्ट गाना होगा झूमते रहिए घूमते रहिए खुश रहिए और हमें क्या चाहिए. तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना जो होगा, इतने सारे लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, डांस तो बनता है भाई.
1: RM2
3: Radio Musti.
1: Feel the Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: मैंने कहा ना मंडे से प्यार करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता. जब मन लग जाता है इंतजार खुश इंसान इतना खुश हो जाता है कि कोई स्टूडियो में आके कहता है यूहू इट्स मंडे यूहू गुड मॉर्निंग
3: गुड मॉर्निंग ओह या आई फॉरगॉट टुडे गुड मॉर्निंग वेदिता
2: गुड मॉर्निंग मनीषा
3: एंड आप इतने खूबसूरत लग रही हो. मैंने कहा कि इट्स ग्लूमी ग्लूमी वहां पर वकवा में अभी आपको देख रही हूं स्काई इज ब्लू
2: ये कलर का वो है
3: वेरी ब्यूटीफुल बट इट सूट्स यू
2: एंड ऑल
3: दोज हु लव ब्लू जस्ट इमेजिन नाउ कैसे
2: ये मंडे ब्लूज को दूर करने
3: या कह रही हूँ
2: हाँ उसको दूर करने के लिए होता है.
3: वेरी गुड.
2: सो रेडी?
3: यस रेडी. आई वाज वेटिंग. जब दो दिन की छुट्टी हो जाती है देन यू जस्ट वेट इंपेशिएंटली कि कब अगला दिन आ जाए.
2: Exactly.
3: और वापस आ जाए.
2: देखा ऐसे होते हैं मंडे से प्यार करने वाले लोग. तो आप भी अगर एक दिन आपने प्यार कर लिया ना मंडे से फिर उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी. तो चलिए मैं आपको छोड़े जाती हूँ द सेफ हैंड्स ऑफ मनीषमा जो मॉर्निंग मस्ती में आपका साथ देंगी. मैं आपसे मिलूंगी कल मॉर्निंग 7 बजे प्यार के साथ. Take care and love you.
3: Bye-bye, beautiful.
0: A good beat for your morning show. Morning Beat. RM2.
1: Radio Musti.

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आपको आस्था।
1: नमस्कार, 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में आज से यानी 10 अगस्त से पीने के पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां लागू की जा रही है। मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को CWA ड्राई सीजन रेगुलेशंस 2026 लागू करने की मंजूरी दी थी। ये नियम आपको बता दें कि 30 नवंबर तक लागू रहने वाले हैं और देश में पानी का भंडार लगातार कम होने के कारण ये कदम उठाई जा रही है। तो पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियों के बीच इरिगेशन अथॉरिटी ने देश के उत्तरी हिस्से में पानी की स्थिति की जानकारी दी। संस्था के अनुसार लानीकुलिया जलाशय फिलहाल करीब 43% भरा है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। उत्तरी इलाके में पानी पहुंचाने वाले मिडलैंड्स जलाशय की स्थिति उतनी ही गंभीर नहीं है, लेकिन अधिकारी इसके पानी को सिंचाई में इस्तेमाल करने के बजाय घरेलू ज़रूरतों के लिए बचा के रखना चाहते हैं। तो पानी पर लगी ये पाबंदियों, इन पाबंदियों का असर खेती के साथ दूसरे कारोबार पर भी पड़ रहा है। प्लेन विलियम्स में गाड़ियां धोने का काम करने वाले कारोबारियों का मानना है कि वाहनों की धुलाई पर रोक से उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा। घरेलू जरूरतों के लिए पानी की आपूर्ति बनाए रखने के मकसद से CWA दूसरे जल स्रोतों का भी सहारा ले रही है। इनमें भूमिगत जल, नदियां और छोटी जलधाराएं शामिल हैं। पानी के सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के मॉशन प्लान के 6 में से 2 हिस्सों पर काम हो रहा है। मॉशस में जुलाई महीने में रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार नए आंकड़े जारी किए गए हैं। उसके मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में 112.2 अंक से बढ़कर जुलाई में 112.9 अंक पहुंच गया है, यानी एक महीने में 0.6% की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी में शराब और तंबाकू की कीमतों का बड़ा असर रहा है। विदेश की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं, उनमें पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तेजी से फैल रही जंगल की आग के कारण आपातकाल घोषित किया गया है। शुक्रवार को शुरू हुई इस आग से अब तक 136 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए, हमें आगे आ दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.
4: Who is this? Who is this?

0: are you?
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.
3: और क्या? Who are you? मेरा नाम मनीषमा जुड़ गई हूँ आपका साथ निभाने के लिए यहाँ पर 9 से लेकर 12 बजे तक. गुड मॉर्निंग. 9:10 हुए हैं के लिए बढ़ते हुए लवली लवली सिलेक्शन ऊपर से इस घंटे में होने वाला है आपके लिए आपके हॉरोस्कोप. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आपको तो पता ही है नंबर क्या है 5499124. ये है नंबर जुड़ने के लिए आपके मैसेजेस द्वारा हम तक भी पहुँचाइए अपने दिल की आवाज़. ओके जी आई एम हियर टू कीप यू कंपनी विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शन. तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारी गाड़ी को. और दोज हु आर स्टिल स्टक इन द ट्रैफिक फास्टन योर सीट बेल्ट्स नॉट टू फॉरगेट दैट मोबाइल फोन को ना इस्तेमाल करें. प्लीज बी फोकस प्लीज बी माइंडफुल हर एक गाने को आप अप्रिशिएट करें. वेलकम हियर इट्स योर मस्टी मॉर्निंग विद आरजे मनीषमा.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वैसे थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू फॉर योर गुड वाइब्स एंड बोकू हाश आल्सो. वैसे बोकू हाश के साथ ईच एंड एवरीबॉडी जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस सुन रहे हैं, बस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे दिमाग में खड़ रहे हैं कि यार पहुँच ही जाएंगे इस गाने के बाद निकल जाएंगे. ठहरो थोड़ा सा ब्रीथ करूँ और इन्जॉय कीजिए हमारी सिलेक्शंस को. टुडे इज मार्सी सीटास बर्थडे फ्रॉम बालो. कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग from all families and friends tuning to RM2 Radio Masti. Happy birthday to Pari Jotan jo rehte hai Mosel Mosel Tendre, and best wishes from Papa Ravi hai Mama Usha Didi Ushi and Jotan family.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए जी शुरुआत करते हैं विद योर हॉरोस्कोप आज का राशिफल मेष राशियों के साथ. एरीज मेष राशि. आज आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आपको दूसरों से अलग रखेगा. काम में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए तो घबराएं नहीं. काल्म माइंड से लिया गया डिसीजन आपके फेवर में आ जाएगा. लकी नंबर 5.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज घर और फैमिली से जुड़ी कोई अच्छी बात आपको खुश कर सकती है. फाइनेंशियली अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखें. ये है लकी नंबर 8 आपके लिए.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज आपकी बातों में स्पेशल चार्म रहेगा. किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को इम्प्रेस करने का मौका मिल सकता है आपको. वर्क में न्यू आइडियाज को ओपनली शेयर करें. लकी नंबर 3.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज इमोशनल डिसीजन से लेने से पहले थोड़ा वक्त जरूर ले. थिंक एंड डिसाइड. फैमिली मेंबर या फ्रेंड की एडवाइस आपको सही डायरेक्शन दे सकती है. लकी नंबर 6.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज का दिन कॉन्फिडेंस और रिकॉग्निशन का है. आपकी मेहनत किसी सीनियर या इम्पोर्टेंट पर्सन की नज़र में आ सकती है. बस अपनी सक्सेस को हम्बल एटीट्यूड के साथ हैंडल करें. लकी नंबर 1.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज प्लानिंग के साथ चैलेंज तो काफी काम इजीली वो जो प्लानिंग के साथ वो चलेंगे अगर आप ना तो ये सारे जो काम होते हैं जो कठिन काम होते हैं आसान तरीके से कंप्लीट हो सकते हैं. जी हाँ, तो प्लानिंग कीजिएगा. टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग ये सब कुछ. किसी पुराने पेंडिंग मैटर का सलूशन भी मिल सकते हैं आज आपको. लकी नंबर 4.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: लव और रिलेशनशिप्स के लिए आज खूबसूरत दिन है. किसी क्लोज पर्सन के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो सकती है. अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से डरिएगा मत. बस साफ साफ क्लियर माइंड के साथ और क्लियर वर्ड्स के साथ बात को सामने रखो. लकी नंबर 7.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: आज आपका फोकस स्ट्रॉन्ग रहेगा. करियर या बिजनेस से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी भी सामने आ सकती है. जल्दबाजी के बजाय फैक्ट्स को चेक करें. और लकी नंबर आपका 9.
2: सजिटेरियस धनु राशि.
1: आज रूटीन से कुछ डिफरेंट करने का मन करेगा. शॉर्ट ट्रिप लीजिएगा. आउटिंग या फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाइए और देखिए मूड कैसे फ्रेश हो जाते हैं आपके लिए. और लकी नंबर 2.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
1: आज पेशेंस आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ रहेगी. जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन प्रोग्रेस तो पॉजिटिव डायरेक्शन ले रही है. तो यहाँ पर आपके लिए सभी के लिए जो मकर राशियों के लिए है लकी नंबर 10.
2: एक्वेरियस कुंभ राशि.
1: आज क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग रहेगी. आपका कोई यूनिक आइडिया फ्यूचर में एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं आपके लिए. तो लकी नंबर 11.
2: पाइसेस मीन राशि.
1: एंड लास्टली आज आपने माइंड को अननेसेसरी वर्ही से फ्री रखें. ओके, ज्यादा सोचेगा मत. ओवरथिंकिंग इज नॉट गुड. फैमिली और लव्ड वंस के साथ वक्त बिताने से पॉजिटिविटी और इमोशनल एनर्जी दोनों बूस्ट होंगी. लकी नंबर 12. ये थे आपके लिए आपका हॉरोस्कोप.
0: योर डेली हॉरोस्कोप. RM2 रेडियो मस्ती.

0: to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty. The Musty.
5: Time check. सुबह के 10 बजे हैं. आइए बिखरी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ आस्था. नमस्कार आपको.
6: नमस्कार. 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. मॉरिशस में आज से पीने के पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल पर नई पाबंदियां लागू हो गई हैं. सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के ड्राई सीजन रेगुलेशंस 2026 के तहत ये पाबंदियां 30 नवंबर तक लागू रहेंगी. देश के उत्तर में लानिकुलिया जलाशय फिलहाल करीब 43% भरा है. इरीगेशन अथॉरिटी का कहना है कि आने वाले महीनों में बारिश सामान्य से कम रह सकती है. वही गाड़ियों की धुलाई पर रोक से कार वॉश कारोबार भी प्रभावित हुआ है और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सरकार से सहायता की मांग की है. घरेलू जरूरतों के लिए

0: पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए CWA भूमिगत जल नदियों और दूसरी जल धाराओं का भी सहारा ले रही है। इधर मॉरिशस में महंगाई की दर बढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के मुताबिक सालाना महंगाई जून के 3.7% से बढ़कर जुलाई में 4.4% हो गई। वहीं उपभोक्ता जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें एक महीने में 0.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सैनखुआ में आजसू ने करीब 549 ग्राम ड्रग्स जब्त किए जिनकी बाजार में लागत 8.4 मिलियन रुपए से ज्यादा आंकी गई है। जांच जारी है। विदेश में पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तेजी से फैल रही जंगल की आग के बाद आपातकाल घोषित। आग करीब 136 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुकी है और 20,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। कई मकान और संपत्तियां आग की चपेट में आई है। दमकल टीमें आग पर काबू पाने में जुटी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। Rue Julien Desjardins, QPPME, QPPME, Chiasi Salki, 86 years old, ki, Bibi Rahiba Piabux, Bibi Rahiba Piabux, intakal kar gai hai, paidaish nam Jawahir. उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान क्यूपिप से निकालकर दफनाने के लिए बिगहा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: Yeah. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल दोस्ट ट्यूनिंग टू आर इनटू रेडियो मस्ट सेकंड आवर 10:08 हुए हैं अब जुड़े हैं विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शंस रेडियो मस्ती पर. हाय आई एम रेनू विस्तो बच्चन एंड फ्रॉम होशनवा. कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर विदुषी बिपिन. आज उनका जन्मदिन है, वो पूरे 15 साल के हुए हैं. हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम ऑल फैमिलीज एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग टी आर एन टू रेडियो मस्ती राइट नाउ. रेनू विस्तो बच्चन फ्रॉम होशनवा से ये मैसेज आया है. विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे विदुषी. ओके जी, यहाँ पर अर्चना ट्यूनिंग टू आर एन टू रेडियो मस्ती. हैव ए वंडरफुल टाइम. थैंक यू फॉर द लवली सिलेक्शंस. 90s माई प्लेट. गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती टीम. कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर अब्दुल एंड सायरा बानू. ओके जी, कोई नहीं, हम चला देंगे आपके नाम अगला गाना. वैसे ये सॉन्ग हम ढूंढेंगे, अगर मिल जाए तो हम चलाएंगे बेशक आपके लिए. यहाँ पर ये सिलसिला है प्यार का शुरू हो चुका है. नारम टू, हियर वी गो.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.
0: RM2.
1: Radio Musty.
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं. हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है. डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस. हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन. फोन नंबर 5799-3782. हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी.
0: RM2
1: Radio Musty.

चलिए जी, दिल का रिश्ता वाला टाइटल सॉन्ग चल पड़ा आंटी शोभा के लिए, आंटी इंद्रा, आंटी कविता, एंड शिमला, काजल एंड मुमुन ऑल्सो. थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे. या बट हेलो डी, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल आवर एम टू लिसनर्स एंड टीम ट्रैवलिंग फ्रॉम पोर्ट लुइस टू एबन. एंड नाउ लिसन टू माई फेवरेट स्टेशन. इतने प्यारे गाने. द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माई जान, आई लव हिम सो सो मच, फ्रॉम आशा जी.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC Phi सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC Phi मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: लीजिए अभी के लिए गजल की बात छोड़िए, एक खूबसूरत सा फैशन टिप हम आपको देने वाले हैं।
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: I'm G Ladies. अगर आपको अपना look instantly elegant बना देना है तो मोनोक्रोम आउटफिट ट्राई कीजिएगा जरूर, यानी कि हेड टू टो एक ही कलर फैमिली के शेड्स, ब्लैक, बेज या वाइट या पेस्टल टोन्स जैसे कलर्स आपको एफर्टलेसली एक क्लासी लुक दे देता है। और लुक को कंप्लीट करने के लिए एक तो आपको चाहिए स्मॉल हैंडबैग और डेलिकेट ज्वेलरीज को ऐड कीजिए, सिंपल सोफिस्टिकेटेड और स्टाइलिश विदाउट लुकिंग ओवरड्रेस, क्या कहते हो आप? ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कमाल।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Okay, Gene, I'll play with NBC and Rajasthan Works Limited. And win exciting prizes. Stand a chance to win 4 entry tickets and a food coupon for the Jane's Little India Shahi Thali at the Utsav India Murshi Shopping Carnival. Powered by SBI and LIC. तो चलिए यहाँ पर आप बता सकते हैं कि सवाल ये रहा कि वहाँ पर बहुत सारे आइटम्स होंगे. इंटरनेशनल शॉपिंग, होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो. और बताइए कि हमारे जो एंटरटेनमेंट शोज के उसके आधार पर एक सवाल है यहाँ पर. क्या आप बता सकते हैं कि लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर, उनका नाम कौन है जो आ रहे हैं आपके लिए परफॉर्म करने के लिए फ्रॉम द इंडियन आइडल. ओके, लाइव परफॉर्मेंस बाय विच कलाकार, बताइए ऑन दिस नंबर 549 and 1294 पर. ये तो हम रोज बता ही रहे हैं लेकिन आपको बताना है, आज आपकी बारी. बताइए कौन आ रहा है आज इंडियन आइडल सिंगर टू परफॉर्म लाइव एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल. जी हाँ, बताइए ऑन दिस नंबर 549 and 1294 पर और जीतिए ये अमेजिंग गिफ्ट एंड टिकट एंड अ फूड कूपन. तो आप एंजॉय कीजिए हमारे साथ. तब तक के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक. ना भूले कि फुल नेम एंड एड्रेस के साथ भेजना पड़ेगा आपको सही जवाब.
0: RM2
1: Radio Musty.
3: Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Faites le plein de fraîcheur, de saveur et de vitalité pour affronter l'hiver. Venez vivre l'expérience chez Winners.
4: On est tous Winners.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: सुनिए हरी हरन का ये गाना रोजा रोजा फॉर यू, इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग। रोमांटिक गानों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहता है 24/7 अ डे। इट्स आर्डन टू रेडियो मासी ऑफ कोर्स, साथ में भारी आपका मनीष माचल 12 बजे। सभी के लिए दिल जो भी कहे माने, अब तुम भी हम भी, शान वाला गाना हो जाए आप सभी के नाम।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, din ke 11 baje hain. एक बार फिर से संक्षिप्त समाचार आपके साथ आस्था, नमस्कार आपको।
4: नमस्कार, 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मुर्शिद में आज से पीने के पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल पर नई पाबंदियां लागू। CWA के ड्राई सीजन रेगुलेशन 2026 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। देश के उत्तर में लानी कुलिया जलाशय फिलहाल करीब 43% भरा है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। वहीं मिडलैंड्स जलाशय के पानी को सिंचाई के बजाय घरेलू ज़रूरतों के लिए बचा कर रखने पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले महीनों में बारिश सामान्य से कम रहने की आशंका है। इन पाबंदियों का असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। गाड़ियों की धुलाई पर रोक से कार वॉश से जुड़े कारोबारी प्रभावित हैं और सरकार से मदद की मांग कर रही है। वहीं घरेलू ज़रूरतों के लिए पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी भूमिगत जल, नदियों और दूसरे जल स्रोतों का सहारा ले रही है। इधर मॉरिशस में महंगाई बढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के मुताबिक सालाना महंगाई दर जून में 3.7% से बढ़कर जुलाई में 4.4% हो गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी एक महीने में 0.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट और कच्चे माल के बढ़ते दामों को इसके प्रमुख कारणों में बताया जा रहा है। सनकवा में आज सुने करीब 549 ग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। इनमें से मुख्य हैं हेरोइन। जब्त नशीले पदार्थों की बाजार कीमत 8.4 मिलियन रुपए से अधिक आंकी गई है। मामले की जांच जारी है। विदेश स्तर की खबरों में पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तेजी से फैल रही जंगल की आग के बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया है। आग करीब 136 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुकी है। 20,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और कई मकान आग की चपेट में आ गए हैं। दमकल टीमें आग पर काबू पाने में जुटी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। रॉयल रोड पेटी ट्रिविया में 68 साल के लक्ष्मी विजय किसुन दयाल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें शेखर के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी

0: कल दिन के ढाई बजे नशा पे ऑन दो मुरा रॉयल रोड पे चित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबल की शमशान भूमि ले जाए जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट हाफ पास्ट 2 PM. आपको याद दिला दें कि श्री विजय किशन दयाल बोबासा के रहने वाले थे. अलीगढ़ मेबर्ग में 68 साल की 68 years old की मुनियामा वानापिले अपिया की मृत्यु हो गई है. मुनियामा वानापिले अपिया की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम लचिगादू, लोग उन्हें वीना के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थे कल दिन के 11 बजे उनके दामाद विश्वानंद रमाना के मकान में बग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बोलेन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: In the club, bottle full of bub, my mind got. You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: जी दीवाना में जनाफ यू लीड कर हम इतने सारे प्यार हमारे दिल में और आपके लिए यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस हैं. हेलो जी, हाय, हाउ आर यू, आई होप यू डूइंग वेरी वेरी वेल. वैसे यहाँ पर लास्ट आवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ एक बार फिर से इन योर मस्ती मॉर्निंग. 11:10 हो रहे हैं. खासियत फॉर यू, हियर वी गो, थोड़ा सा मिक्स करके नए गाने और 90s सॉन्ग आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए.
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: FM 101.3
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के ही पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

छोटा सा ब्रेक देन विल बी बैक ऑफ कोर्स विद योर फेवरेट सॉन्ग ये है रस्टम इन द

0: हम कहो अगर मैं क्या कहूँ. तो चलिए जी अभी के लिए दैट वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिलेक्शन स्पेशली फॉर ऑल दिस म्यूजिक लवर्स. आरवी के लिए अगला गाना एंड स्पेशली फॉर ललिता जीतन जो कि हर एक गाने को पसंद कर रही है. वैसे I get just so many other songs coming up for you. मैं प्लेलिस्ट देख रही हूँ क्या बात है. वैसे यहाँ पर पूनम आ रही है वापस यहाँ पर लेकर आपके लिए रेट्रो रिदम. यू टेक केयर गाइस.
1: You're listening to Radio Masti.

0: subscribe to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Time check, दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से. आस्था, आपको नमस्कार.
7: नमस्कार, 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. मॉरिशस में आज से पीने के पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल पर नई पाबंदियां लागू हो गई हैं. सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के ड्राई सीजन रेगुलेशंस 2026-30 नवंबर तक लागू रहेंगे. देश के उत्तर में ला निकोलिया जलाशय फिलहाल करीब 43% भरा है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है. वहीं मिडलैंड्स जलाशय के पानी को सिंचाई के बजाय घरेलू जरूरतों के लिए बचा कर रखने पर जोर दिया जा रहा है. आने वाले महीनों में बारिश सामान्य से कम रहने की आशंका है. इन पाबंदियों का असर कारोबार पर भी पड़ रहा है. गाड़ियों की धुलाई पर रोक से कार वॉश से जुड़ी कंपनियां और कई कारोबार प्रभावित हैं और सरकार से मदद की मांग कर रही हैं. वहीं घरेलू जरूरतों के लिए पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी भूमिगत जल, नदियों और दूसरे जल स्रोतों का सहारा ले रही है. इधर मॉरिशस में महंगाई बढ़ी है. स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के मुताबिक सालाना महंगाई दर जून में 3.7% से बढ़कर जुलाई में 4.4% हो गई. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी एक महीने में 0.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को इसके प्रमुख कारणों में से एक बताया जा रहा है. चीन में इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान के बाद 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. तूफान रविवार शाम पूर्वी चीन के प्रांत से टकराया, जहां हवा की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई. शंघाई में भारी बारिश और बाढ़ के बीच करीब 1000 उड़ानें रद्द कर दी गई और कई पर्यटक स्थल बंद है. इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए. हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार.

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: रेट्रो रिदम। नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। 12:08 हो चुके हैं और बाहर बारिश है, और सच बताइए ऐसे सुहाना मौसम होते ही कितने लोगों का दिन अपने आप बन जाता है। और इस मौसम में अगर साथ मिल जाए पुराने सदाबहार गानों का तो फिर बात ही क्या। मैं हूँ आपके साथ पूनम, और शुरू हो रहा है आपका रेट्रो रिदम सिर्फ आरएम टू रेडियो मस्ती पर। चलिए मौसम के साथ गानों को भी इंजॉय करते हैं, और साथ में अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है तो आप भेज सकते हैं 5499124 पर। इंजॉय कीजिए अपने गाने और साथ में ये प्यारा सा मौसम।
1: रेट्रो रिदम RM2 Radio Musti.

0: to Radio Musti.
1: शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12 to 16 अगस्त SBICC 5 मिस मत करना।

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:26 हो चुके हैं दोस्तों, और बारिश की भी आदत है दोस्तों, होती आज है और यादें देके जाती है पुराने दिनों की। और जो इस समय खाना खा रहे हैं या बना रहे हैं लंच करने के लिए, मतलब प्लेट लगा दी है, उनको हम बोलेंगे बन पेची, आराम से खाइएगा, धीरे धीरे खाइएगा, अच्छे से इंजॉय कीजिएगा। अपनी जो प्लेट है उसके अंदर कुछ ऐसा रखिएगा जिससे आपकी हेल्थ बने, ऐसा नहीं कि बस फास्ट फूड लिया और चल दिए। नहीं, ये खाना है जो लंच आवर है, इसको जितना आलीशान शहन शाओगे जैसे खाएंगे ना, तो ये एक दिन आपको एक बहुत ही अच्छी हेल्थ देगी। और कहते हैं कि जिसने इस समय को इंजॉय कर लिया उसने डिनर की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कुछ भी टाइम पास भी मिल जाता है ना, तो आराम से खाया जाता है। बट अगर किसी का लंच स्किप हो जाए तो फिर डिनर में वो पेट को एक अजीब सा ऐसा लगता है, एहसास होता है कि कुछ खाने को मिल जाए, फिर क्रेविंग होती रहती है, फिर लेट नाइट भी उठ के खाते हैं। तो इसलिए लंच बहुत अच्छे से कीजिएगा, साथ में गानों को भी थोड़ा सा स्मूथली अपने गले से उतरने दीजिए, कानों से उतरने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप सबकी पसंद है बहुत ही खूब है। इंजॉय कीजिए इस गाने को, उसके साथ में आपकी फरमाइश की जो भी गाने हैं हम चलाएंगे एक एक करके, पर सबसे पहले ये बहुत ही प्यारा सा गाना है पारस मनी मूवी से, चोरी चोरी जो तुमसे मिले।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:35 हो चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा गाना, ले चल मेरी जीवन साथी। अरे कहाँ लेके चले, कहाँ, कहीं नहीं जा सकते हम। जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। आ गया है मंडे, वीकेंड पे आपने बहुत मस्ती की होगी, फ्राइडे से शुरुआत हुई होगी, प्लानिंग पूरे लास्ट वीक की होगी और उसपे फिर आपने बोला हुआ चलो भाई सैटरडे भी ये करते हैं। कई लोग कॉन्सर्ट्स पे कोई गए होंगे, कोई पार्टी की होगी, कोई आपके घर पर आया होगा, आपने उनके लिए कुछ ना कुछ सेलिब्रेट किया होगा, खाना बनाया होगा, टायर्ड हो गए और आज मंडे है, सब लोग अपने अपने ऑफिस चले गए। आपने भी सोचा होगा थोड़ा सा चलो चिल हो जाता है टाइम, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम मिले, इस समय अगर रिलैक्स कर रहे हैं और पुराने गाने जो कहते हैं ना कि मतलब स्विच ऑफ कर देते हैं ब्रेन को और वो कहते हैं कि अरे भाई अपनी यादों में चले जाओ, उन पुराने गानों में चले जाओ, मस्ती में चले जाओ। और जब ये गाने चलते हैं ना तो दिल करता है सच में चलते रहें, कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं। फिर आराम से थोड़ी देर बाद 2 बजे के बाद थोड़ा सा फिर बॉडी के अंदर एक्शन मोड स्टार्ट होता है और बोलते हैं अरे नहीं शाम को ये करना है, लंच भी हो गया है तो फिर डिनर के लिए बहुत सारी तैयारी हो जाती है। तो आप करते रहिए जो काम कर रहे हैं, कस्टमर को डील कर रहे हैं इस टाइम तो कस्टमर को डील करें, कहीं पे बैठे हुए हैं तो आराम से बैठिए, इंजॉय कीजिए, कुछ टाइम खुद अपने लिए तो दीजिए। तो अगर आपने अपना टाइम निकाल लिया है और आप टाइम दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंजॉय कीजिए गानों को। और उसके बाद थोड़ी देर में हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे, उसके बीच में अगर आपको अभी भी कोई मैसेज भेजना है किसी अपने को तो भेज सकते हैं 5491294 पर। मैं हूँ आपके साथ पूनम।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:50 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। और यहाँ पर जो बौछार, बाहर तो बारिश की बौछार है पर जो मेरी स्क्रीन है उसके ऊपर इतने सारे मैसेजेस और इतने सारे गानों की रिक्वेस्ट है, तो मैं भी सोच रही हूँ एक एक एक एक एक एक करके चलाते हैं, पर साथ में आपके मैसेजेस पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी ये महफिल अधूरी तभी रहती है जब तक आपके मैसेजेस नहीं पढ़ते। तो चलिए, इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आयशा, तेजल, तन्वी, रायना, रायन, मनीषा, आशिता, तरश, एन, कमला जी कथबोन से, विश्वानी जी साथ दे रही हैं, इंद्रा, शारदा, शहीद, सहेली, नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता गजाधर जी भी साथ दे रही हैं। और आज बर्थडे है ऋषि जी का फ्रॉम धनेश्वर, एंड सुनीता जी की तरफ से विशेस मिल रही हैं, माला जी, मीना जी और हंसवी, बीना एंड भाविका, देवदूस फैमिली और सेचरन फैमिली साथ दे रही हैं और उनको विश कर रही हैं कि इतने प्यारे हो, हमेशा ऐसे खुश रहो, एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे हर तुम्हारे सुख दुख में। क्या बात है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है जब आपका परिवार साथ होता है और आपको बर्थडे विशेज़ आती हैं और आपको एहसास होता है कि देखो ये रेडियो के थ्रू हमारे को विशेज़ मिल रहे हैं, आपको अपना नाम सुनना अच्छा लगता है, पर हमें तो अच्छा लग रहा है कि आपके लिए कुछ स्पेशल चलाएंगे। पर तब तक थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं। महेंद्र जी साथ जुड़े हैं और सभी लिसनर्स के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। बिल्कुल हम चलाने वाले हैं, गिव लिस्ट बहुत बड़ी हो गई है। राकेश जी अपनी ममा और ब्रदर नितिन, प्रीति, रानी और पूरे परिवार के लिए गाना सुनाना चाहते हैं। आंटी जी स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए बस कहना चाहती हैं, जान हो मेरी क्या करूं, जान ले लूं या जान दे दूं। सच बात है, बिल्कुल जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इतना प्यारा और होता है, इतनी मिठास होती है इसके अंदर, क्योंकि इंसान इसी बंधन से तो जुड़ा होता है। और अगर आप इतना प्यार देती हैं तो हमेशा आप उनके साथ ऐसे एक ब्यूटीफुल कपल बन के रहे, तो हम तो यही कहेंगे प्यार रहे, खुश रहें। और रेशमा कौशल जी साथ दे रही हैं और उनके हस्बैंड विकी जी और बेटी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं कथरबोन से, और वो भी यही कह रही हैं क्या करूं तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। अरे भाई, आज इतने प्यारे प्यारे से मैसेजेस आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। ललिता जितिन चिड़ी जुड़ी हुई हैं और अपने फ्रेंड सर्कल के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती है। अब्दुल एंसारा बानो साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं क्या करें तुम्हारे बिना जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सुंदर है भैया, ऐसा ही रिश्ता बना रहना चाहिए। फिया जी कह रही हैं आज मुझे कोई मतलब गाना नहीं बताना है, क्या करूं, इतने गाने अच्छे चल रहे हैं, एंजॉय कर रही हूं। थैंक यू सो मच आप सभी का। गाने एंजॉय कीजिए और थोड़ी सी बातें और थोड़े से मैसेजेस थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, तब तक ये गाना आप सबके लिए।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सोमवार से पीने के पानी के इस्तेमाल पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ड्राई सीजन रेगुलेशन 2026 लागू हो गए हैं। गाड़ियों की धुलाई, पौधों में पानी देना, स्विमिंग पूल भरना, अब गैर जरूरी कामों के लिए पेयजल के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। सूखे की मार सिर्फ जलाशयों पर ही नहीं पड़ी है, भूमिगत जल भंडार और नदियां भी दबाव में हैं। पानी बचाने के लिए व्यापक योजना पर काम शुरू हो गया है, लेकिन चिंता की बात ये है कि भूमिगत जल के ये भंडार भी धीरे धीरे सूख रहे हैं। सूखे के इस मौसम के दौरान पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए कार वॉश सेंटरों को भी अब पानी के इस्तेमाल से जुड़े नए प्रतिबंधों का पालन करना होगा। इन उपायों का उद्देश्य गैर जरूरी कामों में पेयजल की खपत को कम करना और उपलब्ध जल संसाधनों का संरक्षण करना है। इसी के तहत कार वॉश सेंटरों को पानी के वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बारिश के पानी को इकट्ठा कर उसका दोबारा इस्तेमाल करना इनमें प्रमुख उपायों में शामिल है। पानी की बचत करने वाली टेक्निकों को अपनाने और उपलब्ध पानी का अधिक कुशलता से इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सूखे के इस दौर में अधिकारियों का संदेश साफ है, पेयजल का इस्तेमाल केवल आवश्यक जरूरतों के लिए किया जाए और जहां संभव हो गैर जरूरी गतिविधियों के लिए वैकल्पिक जल स्रोतों का इस्तेमाल किया जाए। समकालीन कलाकार नालिनी त्रिभुवन ने अपने स्टूडियो के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए हैं। 13 से 15 अगस्त तक कला प्रेमियों को उनकी कलाकृतियों के साथ साथ उन जगहों को भी करीब से देखने का अवसर मिलेगा जो उनकी रचनात्मकता और प्रेरणा का स्रोत है। नालिनी त्रिभुवन ने वर्ष 1988 में अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई थी। तब से लेकर अब तक उन्होंने कला के प्रति अपने जुनून को लगातार लोगों तक पहुँचाया है। कला के प्रति शिक्षिका के रूप में उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने में भी समर्पित किया है। उन्होंने कई युवा कलाकारों का मार्गदर्शन किया और उनके कलात्मक सफर में उनका साथ भी दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के पूर्वी हिस्सों में टाइफून डॉल्फिन के दस्तक देने के बाद अधिकारियों ने वित्तीय राजधानी शंघाई समेत 10 लाख से अधिक लोगों को उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। टाइफून के कारण क्षेत्र में भारी बारिश हुई है और परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई।

0: हैं। आज सोमवार को अकेले शंघाई में करीब 1000 उड़ानें रद्द की गई। हालांकि अधिकारियों ने डॉल्फिन तूफान की स्थिति को घटाकर ट्रॉपिकल तूफान कर दिया है, लेकिन बुधवार तक मूसलाधार बारिश, गंभीर बाढ़ और भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी है। तूफान अब उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले चीनी अधिकारियों ने डॉल्फिन टाइफून के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। इसे इस वर्ष चीन में आने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कल रविवार शाम 5:30 बजे स्थानीय समय पर डॉल्फिन ने जेंगजियांग प्रांत के युहुआ इलाके में दस्तक दी। उस समय तूफान की अधिकतम रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। करीब एक घंटे बाद इसने वेंगजू शहर में दूसरी बार लैंडफॉल किया और आज सोमवार को हेनान, हुबेई, अनहुई, जियांगसू, सेंगजियांग और शंघाई में भी भारी बारिश का अनुमान बताया गया है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
2: Retro Rhythm.
3: RM2. Radio.

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:11 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ में, और वक्त है आगे बढ़ रहा है और वक्त है ऐसे कुछ रंगीन गानों का। जैसे कहते हैं ना कि पुराने गानों की खूबसूरती ही यही है कि एक ख़त्म होता है और दिल चाहता है कि दूसरा गाना शुरू हो जाए, थोड़ी सी मस्ती के साथ में, थोड़ी सी ऐसी बातों के साथ में जहाँ पर कहते हैं ना कि थोड़ी सी टेंशन कम हो और थोड़ा मूड बन जाए शाम को गुड मॉर्निंग कहने का, या कह सकते हैं गुड इवनिंग कहने का, या कह सकते हैं कि जब रात हो तो उसको हम फिर से कह सकें रात तक। यही कि मतलब मुझे तो कई बार लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस किसी को पूरे दिन गुड मॉर्निंग बोलता है, क्योंकि गुड मॉर्निंग के साथ में क्या होता है ना, आपको एनर्जी रहती है, आपको लगता है कि हाँ भाई बहुत ताकत चाहिए, पूरा दिन काम करना है। तो आप करते रहिए काम और साथ में गानों के साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे लोगों के मैसेज रहे हैं बट हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पर आपकी जो चॉइसेस हैं, आपकी जो फरमाइशें हैं, हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो आपकी ये फरमाइश में एक प्यारा सा गाना है ललित जी, जो कि यूएसए से साथ दे रहे हैं और प्यार के साथ कह रहे हैं प्लीज मेरा ये गाना जरूर चलाइएगा मेरी वाइफ के लिए, तो एंजॉय कीजिए अपना ये गाना।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: 92 रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC 5 मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
1: RM2
0: Radio Musti.

रेट्रो रिदम। 1:29 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। और कभी आपने नोटिस किया है कि दोपहर में अचानक से किसी अपने की याद आ जाती है, सोचते हैं पता नहीं अभी क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी। तो सोचते मत रहिए, बस एक छोटा सा मैसेज बस ड्रॉप कर दीजिए, जब उनका टाइम मिलेगा उनको मैसेज का रिप्लाई देना होगा कर देंगे, बट एटलीस्ट उन्हें एहसास तो होगा कि आपने उनको फ्री टाइम में याद किया। ये नहीं कि किसी स्पेशली काम के टाइम किसी को याद करें। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि आपके जैसे मैसेजेस आप किसी को याद करते हैं हमारे थ्रू, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है आपके मैसेजेस पढ़ना। तो हम पढ़ते हैं। सुया बिहारी जी साथ दे रही हैं और अपनी मम्मी के लिए, शारदा जी के लिए और अनीता बेमूल जी के लिए और अपने पति लालदेव जी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और सबको कह रही हैं कि मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूं और बहुत मिस करती हूं, इसीलिए तो आप सबको रेडियो के थ्रू बस एहसास दिला रही हूं कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच सुया बिहारी जी। और हम भी आपके मैसेजेस के बिना हम नहीं रह पाते हैं, इसलिए आप सबका थैंक यू। आकाश चेतन मनसुख जी साथ जुड़े हुए हैं और 90s के फीलिंग में चल रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ एक गाना मेरी मम्मी प्रीति, पापा क्रिश और सिस्टर जीजू मनसुख फैमिली के लिए चलाएंगे। और मुझे पता है कि जो साले होते हैं वो अपने जीजू के ही सब कुछ होते हैं और जीजूओं को भी वाइफ से और सासू ससुर से इतनी बात नहीं होती जितना कि वो अपने सालों से बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो मेरा भाई है ना यही है, तो इसीलिए आपने जीजू का नाम लिखा क्योंकि नाराज़ ना हो जाए। तो चलिए भाई जीजू जी आपके लिए एक प्यारा सा गाना हम बिल्कुल चलाने जा रहे हैं। बेल्जियम से प्रकाशवंती जी जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि मौसम हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, पर आप अब यहाँ पर आकर देखिए यहाँ का मौसम कितना सुहाना और कितना अच्छा हो रहा है। और हम लोग तो पानी भी बचा रहे हैं क्योंकि हमें पानी सेव करना है। तो जो भी हैं जिनको लग रहा है कि आपको पानी सेव करके रखना है तो बस आप सेव करते रहिए। साथ में मिमी सुनो जी और धर्म जी साथ दे रहे हैं और एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं। निर्मला जी साथ दे रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। यलेश जी साथ दे रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। जीना जी पैरिस से साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं। हरीश जी का आज बर्थडे है और उनका पूरा परिवार उन्हें विश कर रहा है और आज हम सभी को कहेंगे जिनका भी बर्थडे है उनको बोलेंगे विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम होल टीम हमारी रेडियो मस्ती की हो, एमबीसी की टीम की हो और आपके परिवार की तरफ से भी ये आप सबके लिए

देव जी स्पेशली आपकी तरफ से आपकी वाइफ के लिए प्यारा सा गाना. और इसमें आज हमारे साथ सुजन धीरेन भूमा जी का भी बर्थडे है और बेस्ट विशेस मिल रही है उनको बराक पुलिस स्टेशन की तरफ से और सारे दोस्तों की तरफ से. इंजॉय कीजिए गाना.

0: रेट्रो रिदम। 1:45 हो चुके हैं दोस्तों, और गानों की जो शरारत होती है ना, इसकी अलग से ही बात होती है। ना जाने कब किसकी याद आ जाए, कोई दोस्त याद आ जाए, कभी कॉलेज याद आ जाता है, कभी वो दिन याद आ जाते हैं जब कभी आप सैड थे, और कभी वो दिन याद आ जाते हैं जब आप बहुत खुश थे और आपको एहसास होता था कि अरे वो टाइम बहुत अच्छा था, अब इतना अच्छा नहीं है, पर जब ये टाइम जाएगा तब आपको एहसास होगा ये भी बहुत अच्छा था। तो चलिए भाई, टाइम तो निकलता जाता है, कभी किसी के हाथ नहीं आया, पता नहीं ना जाने कब से चल रही है, और कभी किसी के लिए रुकी नहीं, ना आपको रुकना है ना मुझे रुकना है, टाइम आगे बढ़ता जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद कोई और आरजे आ जाएगा, उसका अलग फील, उसका अलग मूड, और आपके गानों की भी फरमाइश अलग हो जाएगी। पर हम आपको इतना ही कहते रहे, जो टाइम जिस टाइम में आप अभी हैं इसको इंजॉय कीजिए। अगर खाना खा रहे हैं तो खाना अच्छे से खाइए, ड्राइव कर रहे हैं तो आराम से केयरफुली ड्राइव कीजिए। अपने परिवार के बीच में रहना है, उनके साथ रहना है, गानों को इंजॉय करना है, और हो सके तो फ़ोन को यूज़ मत किया कीजिए गाड़ी चलाते हुए, ये बड़ा रिस्की हो जाता है सभी के लिए। और इतना हम तो इतना ही कहेंगे कि अगर आप किसी कस्टमर की वेट कर रहे हैं तो स्माइल से कीजिए वेट, आप देखिएगा कि थोड़ी देर के अंदर ही कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा मुस्कुराते हुए। खाइए, इंजॉय कीजिए ये गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो।

तो दोस्तों मेरे जाने का वक्त आ गया, लेकिन आपको गानों का सिलसिला चलता रहेगा। आज के रेट्रो दिन में बस इतना ही। बहुत प्यार दिया आपने, मैं थी आपके साथ पूनम, आपको अब साथ मिलेगा परी का। एंजॉय कीजिएगा मेरी तरफ से, बाय बाय।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था
1: आश्रिता।
0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परीश्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। पिछले वर्ष स्कूल सर्टिफिकेट यानी एसी परीक्षाओं में मॉरिशस के विद्यार्थियों ने 9 विषयों में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि का जश्न आज सुबह मुक्का MGI में आयोजित एक समारोह के दौरान मनाया गया। समारोह का आयोजन मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट की ओर से किया गया। इस मौके पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे जो इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि मॉरिशस के युवा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह सक्षम है। यूथ पार्लियामेंट का 5वां संस्करण इस सप्ताह राष्ट्रीय सभा में आयोजित किया जाएगा। आज सुबह 76 प्रतिभागियों ने एक प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लिया जिसकी अध्यक्षता नेशनल असेंबली की अध्यक्ष ने की। इस संस्करण के उद्घाटन समारोह में विपक्ष के नेता के साथ साथ कई सांसद भी मौजूद थे। यूथ पार्लियामेंट का उद्देश्य युवाओं को संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित कराना, सार्वजनिक रूप से अपने विचार प्रभावी ढंग से रखने का आत्मविश्वास विकसित करना और लोकतंत्र तथा सुशासन के सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के तातारस्तान गणराज्य में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है जबकि 39 लोग अन्य घायल भी हुए हैं। रूसी अधिकारियों ने इसे यूक्रेन में मॉस्को के पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर हुए सबसे घातक एकल हमलों में से एक बताया है। हमले को लेकर यूक्रेन की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं। ये हमला निज़्नेकात्मस्क शहर में हुआ जो यूक्रेन की सीमा से 1100 किलोमीटर से अधिक दूर है। और स्थानीय सूत्रों के अनुसार ड्रोन हमला रात भर कई घंटों तक जारी रहा और सुबह तक चलता रहा। उधर चीन के पूर्वी हिस्सों में टाइफून डॉल्फिन के दस्तक देने के बाद अधिकारियों ने वित्तीय राजधानी शंघाई समेत 10,00,000 से अधिक लोगों को उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। टाइफून के कारण क्षेत्र में भारी बारिश हुई है और परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आज सोमवार को अकेले शंघाई में करीब 1000 उड़ानें रद्द की गई। हालांकि अधिकारियों ने डॉल्फिन तूफान की स्थिति को घटाकर ट्रॉपिकल तूफान कर दिया है लेकिन बुधवार तक मूसलाधार बारिश, गंभीर बाढ़ और भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रही बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। ग्रांड रोजाली देपिने में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड की जनाब मादरन हसन जामिया, जनाब मादरन हसन जामिया जिन्हें हसन क्वाफिया के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनका जनाजा, ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। ग्रांड रोजाली देपिने में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के जनाब मादरन हसन जामिया, जनाब मादरन हसन जामिया इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज शाम 4 बजे इनके मकान ग्रांड रोजाली देपिने से उठाकर दफनाने के लिए बामोशों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM रूथ रॉयल यूनियन पार्क में 44 साल की 44 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रकाश बर्तानी, जिन्हें जुल अविनाश के नाम

0: सभी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी। अर्थी आज शाम 3 बजे उनके भाई रोशन बौतानी के घर यूनियन पार्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाएगी कमीशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: More music in the mix.
2: आज आजादी है।
3: बॉम्बे टॉकीज़
4: रेडियो मस्ती
5: रेडियो मस्ती।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: ऐ जाते हुए लम्हो वेल विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक हम कर रहे हैं आपका वार्म वेलकम ऑन दिस ब्यूटीफुल मंडे आफ्टरनून 2:10 हो गए हैं दोस्तों एंड इट्स 10th ऑफ ऑगस्ट व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ओरिजिनल गाना तो लवली था ही लेकिन विशाल मिश्रा की आवाज में ये जो गाना है इट हिट्स डिफरेंट सो ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ बॉलीवुड के लेटेस्ट ट्रैक्स होंगे बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स होंगी एंड मैं हूं परी आपके साथ अभी से लेकर दिन के 4 तक बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाएंगे और कुछ प्यारे गाने आपकी इस आफ्टरनून को और भी खास और स्पेशल बनाने लाइक वी ऑलवेज से दैट हर रिश्ता होता है खास और स्पेशल लेकिन दोस्ती का रिश्ता ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल होता है सो द नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर ऑल द फ्रेंड्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ दे रहे हैं आप ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती और आपका साथ हमारे लिए खास एंड स्पेशल सो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस रहेगा इंतजार 5499-1294 पर दैट्स अ मैजिकल नंबर जहां पर हमेशा हम करते हैं आपका इंतजार अभी के लिए अगला गाना हमारे सभी दोस्तों के नाम स्टे कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ

0: So well friends, connected हैं आप अभी इस वक्त हमारे साथ on RM2 Radio Masti and every afternoon we make it special. दोपहर का जो time होता है, it's a special time जहां पर मौका मिलता है to connect with our listeners. So अभी के लिए it's time जहां पर हम एक game खेलेंगे. खेले आप MBC and Rajasthan Works के साथ. जीत सकते हैं 4 entry tickets and 1 food coupon. Details देंगे आपको थोड़ी ही देर में. अभी के लिए आपसे के लिए हम एक simple सा सवाल लेकर आए हैं जो अगला गाना आप सुनने वाले हैं. Taken from the film Dhurandhar और आपको हमें बताना है ये जो गाना है कौन से सिंगर ने गाया है. A very simple question for our dear listeners because हम चाहते हैं कि ये जो इनाम है वो आसानी से आप तक पहुंचे. So आपको हमें बताना है कि ये जो गाना है वो कौन से सिंगर ने गाया है. Waiting for your right answers 5499-1294 पर 5499-1294 पर आपके पूरे नाम और पते के साथ. All the best.
1: More music in the mix.
2: आज आजादी है.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musty.
5: Radio Musty.

0: Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: सो वेल फ्रेंड्स, 2:27 2:27 एंड यहाँ पर हमने आपसे पूछा था एक सवाल कि ये जो सिंगर है वो कौन है. द राइट आंसर इज खान साहब. वेल, उन्हीं की आवाज में ये मैजिकल गाना हमने सुना है फ्रॉम द फिल्म धुरंधर. ये गाना था आप सभी के नाम. सिंपल सा क्वेश्चन हमारे सभी दोस्तों के लिए एंड यहाँ पर वी गॉट लोड्स ऑफ राइट आंसर्स एंड लकी ड्रॉ के बाद जो नाम सामने आया है आप है नसरीन जगू, आप है वाकवा से. सो कंग्रेचुलेशंस. तो चलिए, यहाँ पर आपने हमें दिया है बिल्कुल सही जवाब. आपको कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीता है बहुत कुछ खास और सारी डिटेल्स आपको देंगे. लेकिन सबसे पहले हमारी बिना नसरीन जगू, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो यहाँ पर आपने हमें दिया है बिल्कुल सही जवाब. सही जवाब देने के बाद लेट मी टेल यू दैट आपने जीती है 4 एंट्री टिकट्स एंड अ फूड कूपन फ्रॉम जेंस लिटिल इंडिया और साथ ही जीती है एक शाही थाली जिसे आप एंजॉय कर पाएंगे एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक एट SBICC पाए 10 से लेकर रात के 9 बजे तक. यू कैन गो एंड एंजॉय दिस शॉपिंग फेस्टिवल. साथ ही वहां पर होने वाला है बहुत कुछ, इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है, इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन का स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, कैनमा का शो होगा, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे एंड फूड फेस्टिवल एज वेल. ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड. सो वेल, आपके नाम को कलेक्ट करने के लिए नसरीन जी आपको आना होगा MBC मंडे टू फ्राइडे. आप यहाँ पर आ सकते हैं सुबह 10 से लेकर आफ्टरनून 3 PM तक. डू ब्रिंग योर ID अलोंग और जीतने के मौके और भी मिलेंगे. स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Bombay Talkies
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: So well friends, it's 2:37 B-Town की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं. वैसे आज का दिन तो है खास, देखिए कि नाम हमने already आप तक पहुंचा दिया. और अब खास बात यह है कि आपकी जो बोरिंग afternoons है उसे हम थोड़ा सा स्पेशल बनाते हैं B-Town की खबरों के साथ, जहां पर आपकी जो फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है ये सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं. So well, it's time for your Bombay Talkies. And आपको बता दिए, दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह एक बेटी के पेरेंट्स तो बन चुके हैं और उनकी बेटी का नाम है दुआ. और कपिल के परिवार में एक बार फिर गुड न्यूज आने वाली है. अपने दूसरे बेटे का स्वागत करने के लिए दे आर ऑल सेट ऑलरेडी. दीपिका ऑलरेडी 8 months प्रेग्नेंट है और अगले महीने उनके घर किलकारियां जो है वो गूंजने वाली है. लेकिन इससे पहले राका की शूटिंग वो पूरी कर रही है, यानी कि बेबी को वेलकम करने से पहले जो भी उनके कमिटमेंट्स हैं उन्हें वो पूरा करना चाहती है. और रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण सितंबर में अपनी डिलीवरी से पहले राका की जो शूटिंग है उसे पूरी करने वाली है. 8 months की प्रेगनेंसी में भी दीपिका फिल्म की शूटिंग जारी रखे हुए है और खबर ये है कि जरूरत पड़ने पर देर वक्त तक वो काम भी कर रही है. लेकिन वी डोंट नो दैट शी हैज अ डोटिंग हस्बैंड उनके बाजू में जो हमेशा उनका साथ निभाते हैं. सो वेल, अभी के लिए तो इस कपल को बहुत सारी गुड विशेस. एंड दीपिका इज वर्किंग रियली हार्ड. सारे जो उनके कमिटमेंट्स हैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद वो आराम से अपनी बेबी को वेलकम करना चाहती हैं. सो वेल, इस घड़ी का इंतजार तो हम सबको रहेगा. लेकिन अभी के लिए जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, आपके लिए गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. आप भी साथ दे रहे हैं. सो ऑल यू हैव टू डू इज आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499 1294.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Techies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: And that was a beautiful, beautiful song. Aavan Jaavan De, ये गाना था आप सभी के लिए जो हमारे दिल में हमेशा आते रहते हैं और आपके लिए हम wonderful news लेकर आते हैं क्योंकि बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाना ये तो हमारा काम है और आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है ये खबरें आप तक पहुंचाना ये हमें काफी अच्छा लगता है. सो लेट मी टेल यू, एक्टर आमिर खान, सैफ अली खान एंड अक्षय खन्ना की आइकॉनिक फिल्म दिल चाहता है को आज 25 years कंप्लीट हो रहे हैं और इस खास मौके पर यहाँ पर हम बता दी दैट इस फिल्म का जादू आज भी फैंस के दिलों में एकदम वैसे ही बना हुआ है. इस खास मौके पर फरहान अख्तर ने भी एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. दिल चाहता है कि 25 इयर्स पूरे होने पर एक्टर फरहान अख्तर ने एक खास पोस्ट शेयर की है. उन्होंने लिखा है दैट 25 इयर्स, कांट बिलीव इट हैज बीन 25 इयर्स. आकाश, समीर एंड सिड डोंट लुक लाइक दे हैव एज्ड अ डे एंड हार्ट फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड टू यू द ऑडियंस फॉर कीपिंग इट अलाइव एंड स्टिल रेलेवेंट. बिग हग. ये स्वीट सा मैसेज, इमोशनल सा मैसेज ये शेयर किया है फरहान अख्तर ने दिल चाहता है कि 25 इयर्स कंप्लीट होने पर. और ये फिल्म ऐसी है जहां पर जब भी इस फिल्म को देखता है कि ओ माय गॉड दिस फिल्म इज सच अ ब्यूटीफुल फिल्म. अगर आप दोस्ती की बात करते हैं, अगर आप प्यार की बात करते हैं, तो ये फिल्म हर एक इमोशन को परफेक्टली टच करती है. और अभी के लिए हमने दोस्ती की बात की, यानी कि हमारे सभी दोस्त जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. द नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट फॉर यू एंड इक्वली गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ दिल चाहता है. तो चलिए दोस्तों, आफ्टरनून टाइम कनेक्टेड हैं आप आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ. मैं हूं फरी आपके साथ टिल 4 पीएम राइट हियर हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन पर. लेकर आए हैं आपका आफ्टरनून बॉलीवुड शो, दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज. एवरी डे यानी कि मंडे टू फ्राइडे होता है ये शो आपके नाम. 2 से लेकर 4 बजे तक आपका साथ, आपका प्यार.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
2: शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC 5 मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: So, well, friends, beautiful songs आपके लिए on RM2 Radio Musti. अभी के लिए it's 2:54 and with this beautiful indie pop हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर. आप कहीं मत जाइए, हमारा साथ निभाइए on RM2 Radio Musti. मैं हूँ परी आपके साथ 4 PM.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती
3: RM2 रेडियो मस्ती।
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
6: North, South,
7: 103.5.
6: East, West,
7: 96.4.
6: Center,
7: 99.5.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस बायोमास फ्यूल एग्रीगेशन लिमिटेड की शुरुआत अगले कुछ महीनों में किया जाएगा। ये संस्था बिजली घरों के लिए बायोमास की आपूर्ति, लॉजिस्टिक और भंडारण का प्रबंधन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय बायोमास नीति के तहत कोयले से धीरे धीरे बाहर निकलने की रणनीति को लागू करने में मदद करना है। शुरुआती चरण में सरकार बिजली उत्पादन में लकड़ी के चिप्स के इस्तेमाल को बढ़ाकर 10-15% करने की योजना बना रही है। ओमनिकेन का लबाक बिजली घर लिस्कालिये में पहले से ही अधिक स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में इस क्रमिक बदलाव में योगदान दे रहा है। पिछले वर्ष स्कूल सर्टिफिकेट यानी एससी परीक्षाओं में मॉरिशस के विद्यार्थियों ने 9 विषयों में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि का जश्न आज सुबह मुका एमजीआई में आयोजित एक समारोह के दौरान मनाया गया। समारोह का आयोजन मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट की ओर से किया गया। इस मौके पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जो इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि मॉरिशस के युवा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। यूथ पार्लियामेंट का 5वां संस्करण इस सप्ताह राष्ट्रीय सभा में आयोजित किया जाएगा। आज सुबह 76 प्रतिभागियों ने एक प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता नेशनल असेंबली की अध्यक्ष ने की। इस संस्करण के उद्घाटन समारोह में विपक्ष के नेता के साथ साथ कई सांसद भी मौजूद थे। यूथ पार्लियामेंट का उद्देश्य युवाओं को संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित कराना, सार्वजनिक रूप से अपने विचार प्रभावी ढंग से रखने का आत्मविश्वास विकसित करना और लोकतंत्र तथा सुशासन के सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें कुछ अलग एक मामले के बारे में। अमेरिका के सबसे चर्चित अनसुलझे मामलों में से एक मशहूर रैपर टुपाक शाकूर की हत्या का मुकदमा आज सोमवार को लास वेगास में शुरू हो रहा है। 63 वर्षीय ड्वेन डेविस, जिन्हें केफीडी के नाम से भी जाना जाता है और जो कभी साउथ साइड कैम्पटन क्रीप्स गिरोह के नेता रहे हैं, पर टुपाक की हत्या की साजिश रचने और हत्या में इस्तेमाल हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है। अभियोजन पक्ष अदालत में ये साबित करने की कोशिश करेगा कि डेविस ने हत्या की साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। दोषी ठहराए जाने पर उन्हें बिना परोल के आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। 7 सितंबर 1996 की रात कैलिफोर्निया के मशहूर रैपर टुपाक शाकूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय उनकी उम्र महज 25 वर्ष थी। टुपाक वेस्ट कोस्ट हिप हॉप संस्कृति के सबसे प्रभावशाली और चर्चित कलाकारों में से एक थे और उनकी छवि एक बैड बॉय रैपर के रूप में बनी थी। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: RM2 रेडियो मस्ती,
3: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
4: आज आजादी है।
5: Bombay Talkies
6: Radio Musty
7: Radio

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: जैसे हम कहते हैं दोस्तों कि ओरिजिनल गाने ओरिजिनल होते हैं एंड व्हेन यू नो दैट यू आर टचिंग अ मास्टरपीस तो फिर आपको अपना बेस्ट देना जरूरी होता है एंड धुरंधर का हर एक गाना लाजवाब रीमेक्स रीमिक्सेस परफेक्शन के साथ कैसे किया जाता है ये हमें इस फिल्म को देखकर पता चलता है यानी ये गाने इतने लाजवाब है और गाने इतने परफेक्टली प्लेस किए गए हैं कि उसके जो उसका उसके साथ जो मूवी का चार्म है वो और भी दुगना हो जाता है तो चलिए दोस्तों अभी के लिए हम भी तो यही कहना चाहते हैं कि आपके साथ हमारे इस शो का चार्म वो भी थोड़ा सा दुगना हो जाता है सो थैंक यू फॉर द लव एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर हमारा साथ देने के लिए ऑन 5499 1294 आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस हमेशा यही इशारा करते हैं दैट आपका साथ आपका प्यार हमेशा हमारे साथ है यू ऑलवेज कनेक्टेड एंड दैट मींस अ लॉट सो चलिए अभी के लिए 3:08 हो गए हैं 10th of August मंडे आफ्टरनून कनेक्टेड है आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ और मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM बी टाउन की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं एंड दैट्स योर पसंदीदा शो जिसका नाम है बॉम्बे टॉकीज जहां पर हम आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज की लाइफ की खबरें आप तक लेकर आते हैं क्या कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में कौन सी नई फिल्म रिलीज हो रही है कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एकदम मस्त काम कर रही है या फिर थोड़ी सी फ्लॉप साबित हो रही है ये सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं सो अगर आप में भी है वो बॉलीवुड का कीड़ा और आप भी जानना चाहते हैं कि बॉलीवुड में क्या कुछ हो रहा है स्पेशल सा सो बस हमारे शो के साथ आप जुड़े रहें अभी से लेकर दिन के 4 तक रहेगा आपका और मेरा साथ एंड फॉर नाउ वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग रीमेक्स रीमिक्सेस का जमाना है लेकिन जैसे हमने कहा कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं और रीमेक्स इन्हें और भी खास बनाते हैं सो दैट्स अ स्पेशल वन पन्ना की तमन्ना हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुड म्यूजिक आपके लिए 24/7 ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: एंड यहाँ पर हम भी विश करते हैं जो भी आपकी तमन्ना है वो पूरी हो जाए. हमारे सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं, दिस वन गोज़ आउट फॉर यू, गोज़ आउट फॉर हस्बैंड धर्मेंद्र, बेटा जेवन एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, सभी परिवार के लिए. कमिंग फ्रॉम ज्ञानी जी मिडलैंड से हमारा साथ दे रही हैं आप, दिस वन गोज़ आउट फॉर यू. वी ऑल्सो हैव डेविसन ऑल द वे फ्रॉम लाल माटी. आए हैं आप अपनी गुड विशेज लेकर ऑन रेडियो मस्ती, सो दिस वन गोज़ आउट फॉर यू. और आज परी जूतन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आप हैं मौसल मोहसिन दौंद्रे से एंड आपके लिए स्पेशल विशेज दैट्स कमिंग फ्रॉम पापा रवि, मामा उषा आपकी दीदी, और फिया है मीनाक्षी एंड एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत सारा प्यार ऑन योर स्पेशल डे. सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके नाम. सभी हमारे लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर. अभी के लिए म्यूजिक का रंग आपकी लाइफ में घोल रहे हैं. एंजॉय दिस वन.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well, that was a beautiful song. कौन दिशा में लेके चला है बटोरिया, ये गाना था हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. चलिए दोस्तों बात करेंगे द डिप्लोमैट के बाद जॉन इब्राहिम एक बार फिर शिवम नायर के साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं. ऐसी चर्चा है कि दोनों की अपकमिंग एक फिल्म है, एक नया प्रोजेक्ट है जो दोनों साथ करने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों एक एक्शन थ्रिलर फिल्म पर काम कर रहे हैं. उसका अभी तक नाम जो है वो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इसमें दोनों ही मेन लीड में नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन की अगली फिल्म एक कमर्शियल एंटरटेनर होगी. इसे शिवम नायर के अब तक के सबसे मेनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक बताया जा रहा है. हालांकि फिल्म की बाकी कास्ट और दूसरे हीरो को लेकर अभी कोई भी जानकारी नहीं है. और एक रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती बातचीत के दौरान जॉन इब्राहिम को ये प्रोजेक्ट काफी पसंद आया है. और एक रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि जॉन इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, काफी इंप्रेस हुए हैं और तुरंत इसके लिए तैयार हो गए. सो अब देखना ये होगा कि ये कौन सी फिल्म होगी, क्या होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी अ कमर्शियल फिल्म, सो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली गुड न्यूज फॉर ऑल जॉन इब्राहिम फैंस. वैसे एक्टिंग तो वो हमेशा अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभार जैसे हम कहते हैं किस्मत का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो वी डू होप आफ्टर डिप्लोमैट हम उन्हें एक और एक्शन थ्रिलर में देख पाए. फुल ऑन कमर्शियल फिल्म है ये, सो लेट्स वेट एंड वॉच के ये क्या कमाल दिखाने वाले हैं इन द फिल्म. अभी के लिए तो कमाल दिखा रहे हैं आप. इतने मैसेजेस डेडिकेशंस यानी कि भर भर के आपका जो प्यार है वो हम तक पहुंच गया है. सो थोड़ी ही देर में आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस जरूर लेकर आएंगे, आपके लव्ड वंस के नाम भी होंगे प्यारे से गाने विद योर मैसेजेस एंड डेडिकेशंस. सो नॉट टू फॉरगेट मैं हूं परी आपके साथ एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: सवाल यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लिसनर्स वी ऑल्सो हैव नानी शोभा जो इस वक्त वालिद फ्रेड से हमारा साथ दे रही हैं मॉर्निंग हो या आफ्टरनून हमेशा आप कनेक्टेड रहती हैं इक्वली गोज आउट फॉर रोनीश फॉर सैनीश एंड फॉर रोशनी एंड फॉर साइलेश सभी बिसेसा एंड कालीचरण परिवार के नाम यू ऑल्सो हैव अ स्वीट पैरट जो इस वक्त आपके साथ है तो ये गाना उनके नाम भी साथ ही यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कविता आप भी गानों को एंजॉय कर रही हैं सो वी हैव दिस ब्यूटिफुल रोमांटिक गाना आपके नाम एंड यहाँ पर कह रहे हैं दैट गाने तो है प्यारे आप हैं हमारी प्यारी सी रोशनी जी रोमांटिक मौसम रोमांटिक गानों को एंजॉय कर रही हैं और चलिए ये प्यारा सा गाना इसे हम डेडिकेट कर रहे हैं फॉर यू सेंडिंग लोड्स ऑफ लव एंड बहुत सारा प्यार आपके नाम एंड थैंक यू सो मच इतने प्यार से आपने कनेक्ट किया है आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ इक्वली गोज आउट फॉर विशाल द बस ड्राइवर ही इज मूविंग राइट नाउ फ्रॉम फ्लॉक टू गुडलैंड्स और उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज दैट्स कमिंग फ्रॉम समवन वेरी स्पेशल तो ये गाना सभी हमारे स्पेशल दोस्तों के नाम जो हमेशा हमारा साथ देते हैं अभी के लिए तो मौसम नॉट दैट ऑसम और ऐसे मौसम में गाने ही हैं जो आपके मूड को थोड़ा सा चेरअप कर सकते हैं सो वी हैव सम लवली सॉन्ग्स टेक योर चाय एंड कॉफी और एक एक सिप के साथ एंजॉय करें इन गानों को इस मौसम को एंड वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ आरएम2 रेडियो मस्ती मैं हूं परी आपके साथ 4 PM साथ देने के लिए शुक्रिया मैसेजेस डेडिकेशंस 5499 1294 पर

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: And well, friends, chak dhoom dhoom karkar aaye the, and it's time ki now we say goodbye to our dear listeners. Vakt ho chala hai ki pari aap se le alvida, lekin jaate jaate aapka kuch pyaar, aapke kuch messages 5499-1294 par. We have our dearest Apadu parivar, jo hameesha hamara saath de rahe hain. Aur kehte hain, is vakt hum enjoy kar rahe hain all the way from Flak, and thank you so much, aapne saath diya hamara. Waise to roz Hoshnua se hamare saath judte hain, aaj aap Flak mein hain and enjoying your shopping time. So have a great time, Apadu families. Shweta, Ravish Prisha and Love Shagla Gana dedicate hoga aapke naam and sending loads of love and loads of good wishes. Kehte hain that hope you had a nice weekend, Pari. Yes, mera weekend to bahut acha tha. Thank you so much. Romantic mausam mein romantic gaane acche lag rahe hain. Ye to aapne bilkul sahi kaha. Waise mausam ke hisab se agar gaane chale to phir sab kuch ekdam perfect lagta hai. Aur aaj koshish yahi thi ke is mausam ko aap enjoy kar paye hamare gaano ke saath. So thank you so much, Roshni. Agla gaana hoga aapke liye and sending loads of love to you. Saath यहाँ पर एक प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं आप है यलेश एंड सभी शाम परिवार ऑफ सुरिनाम. सो वेल फ्रेंड्स, अगला ट्रैक आप सभी के नाम, टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. और इसी ट्रैक के साथ परी साइनिंग ऑफ. आ रही है गिनीशा लेकर योर रफ्तार वाइब्स. आपसे मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज़. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ एंड हैव अ वंडरफुल मंडे.

0: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती. जी हाँ दोस्तों, चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 4 PM.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
3: Radio Musti.
4: North, South,
3: 103.5.
4: East, West,
3: 96.4.
4: Center,
3: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
6: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार आशिता के साथ. नमस्कार.
7: नमस्कार गिनी शाश्वताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है. मॉरिशस इस समय बारिश की कमी का सामना कर रहा है और आने वाले महीनों में इस कमी की भरपाई होने की संभावना कम है. मॉरिशस मौसम विभाग के अनुसार एल नीनो के और मजबूत होने की आशंका के बीच अक्टूबर तक सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है. जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों का कहना है कि मॉरिशस को अब पानी के संरक्षण के लिए ठोस और दीर्घकालिक उपायों पर विचार करना होगा. इनमें बारिश के पानी को जमा करने और संरक्षित रखने के लिए छोटे जलाशयों यानी मिनी रिजर्वोर या का निर्माण भी शामिल है. विशेषज्ञों के मुताबिक बदलते मौसम के बीच बारिश के हर स्रोत का बेहतर प्रबंधन करना और उपलब्ध जल संसाधनों को सुरक्षित रखना अब पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है. मॉरिशस बायोमास फ्यूअल एग्रीगेशन लिमिटेड की शुरुआत अगले कुछ महीनों में किया जाएगा. ये संस्था बिजली घरों के लिए बायोमास की आपूर्ति, लॉजिस्टिक और भंडारण का प्रबंधन करेगी. इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय बायोमास नीति के तहत कोयले से धीरे धीरे बाहर निकलने की रणनीति को लागू करने में मदद करना है. शुरुआती चरण में सरकार बिजली उत्पादन में लकड़ी के चिप्स के इस्तेमाल को बढ़ाकर 10-15% करने की योजना बना रही है. ओमनीकेन का लाभा बिजली घर लिस्कालिये में पहले से ही अधिक स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में इस क्रमिक बदलाव में योगदान दे रहा है. फेडरेशन दे ट्रावायर्स यूनी के नेगोशिएटर आत्मा शांतो ने आज सोमवार से राजधानी के कंपनी गार्डन में भूख हड़ताल शुरू कर दी है. वे निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों द्वारा सामूहिक समझौते और श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर यूनियनों के साथ बातचीत करने में कथित अनिश्चा का विरोध कर रहे हैं. ट्रेड यूनियन नेता ने सरकार से मांग की है कि इस संबंध में एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट की समीक्षा की जाए ताकि सामूहिक सौदेबाजी और श्रमिकों के अधिकारों को और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सके. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के तातारिस्तान गणराज्य में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है जबकि 39 अन्य लोग घायल हुए हैं. रूसी अधिकारियों ने इसे यूक्रेन में मॉस्को के पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर हुए सबसे घातक एकल हमलों में से एक बताया है. हमले को लेकर यूक्रेन की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. ये हमला निजनेकास्मक शहर में हुआ जो यूक्रेन की सीमा से 1100 किलोमीटर से अधिक दूर है. हमले का वास्तविक निशाना क्या था इसकी अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. हालांकि यूक्रेन ने हाल के दिनों में रूस में उन ठिकानों पर अपने हमले तेज किए हैं जिनके बारे में उसका कहना है कि वे यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के लिए राजस्व और रसद सहायता उपलब्ध कराते हैं. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो

0: आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
1: RM2.

वेलकम टू क्योटम स्टूडियो की घड़ी में 4:07 हो चुके हैं. विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्कार जी. गिनिशा का प्रणाम. टुडे इट्स मंडे 10th ऑफ अगस्त. हां जी रोज 10 दिन बीत गए इस महीने का. सो आप सभी लोगों का स्वागत है इन दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स रफ्तार वाइब्स जहां पे गिनिशा लेके जाती है ऑन योर फिल्मी राइड्स. जी हां, स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन फॉर सम लेटेस्ट बॉलीवुड के गाने, धमाकेदार गाने सुनाएंगे आपको, लेके जाएंगे स्पोर्ट्स की दुनिया में एंड यू गोना गॉट योर ट्रैफिक न्यूज एंड एज वेल एज सम लवली लवली बातें करेंगे आप लोगों के साथ. स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड.

तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में. ऑफ कोर्स आई हैव गॉट यू द बेस्ट सिलेक्शन ऑफ म्यूजिक टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग. हेलो जी, ड्राइव केयरफुली.

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: Well, guys, I really hope that you are really enjoying this beautiful and mesmerizing गाने जो लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए on RM2 Radio Mastia. और फिलहाल के लिए जी everybody is asking me message करके कि game है या नहीं. बिल्कुल जी, we do have a game right now, so let's kick start it. So this game is powered to you by Rajasthan Works Limited. Right now के लिए you can play with MBC and Rajasthan Works and win exciting prizes. और of course you can stand a chance to win 4 entry tickets and 1 food coupon for the gents Little India Shahi Thali at the सर्व इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल जो है पावर्ड बाय SBI NLIC शुरू होने वाला है फ्रॉम द 12th ऑफ अगस्त टिल द 16th ऑफ अगस्त. सुबह खुलेंगे 10 बजे और रात के 9 बजे तक और वहां पे यू कैन एक्सपीरियंस 5 डेज ऑफ शॉपिंग एंटरटेनमेंट एंड फैमिली फन फीचरिंग यानी कि इंटरनेशनल होम शॉपिंग एंटरटेनमेंट शोज मैजिक शोज फैशन शोज लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर जिसका नाम है परिणय जैन. स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है बाय द बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर. कानमा शो ब्लड डोनेशन कैंप फूड फेस्टिवल बहुत कुछ होने वाला है वहां पे. और हमारा सवाल बहुत ही आसान, यू जस्ट हैव टू टेल मी ये जो हमारे उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल है जो 12 अगस्त से

0: 16 अगस्त तक होने वाला है। आपको बस मुझे बताना है ये कहां पे होने वाला है। Where is it going to take place? The Utsav India Mauritius Shopping Carnival। जी हां, कौन सी जगह पे ये होने वाला है, ये Mauritius Shopping Carnival। 5499-1294, send me the right answer right now। 5499-1294 पर full name और full address के साथ।
1: You're listening to Radio Mastee.

0: 4:38 हो चुके हैं और जी हाँ दोस्तों, वी आर हैविंग अ लवली गेम हैपनिंग राइट नाउ ऑन आवर रंग टू रेडियो मस्ती, जहां पे आप जीत सकते हैं 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC। जहां होने वाला है ये 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक, सुबह 10 बजे खुलेंगे रात के 9 बजे तक। और हमने पूछा एक सवाल कि ये जो उत्सव है कहाँ पे होने वाला है, वेयर इज इट गोइंग टू हैपन द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल। और सही जवाब है SVICC अटपाई, स्वामी विवेकानंद अटपाई, और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। बट ऑफ कोर्स वी डू हैव वन लकी विनर, सो लकी ड्रॉ में आज उमाई तूफानी का नाम निकल आया है। सो कंग्रेचुलेशन, आज का लकी विनर है उमाई तूफानी, जो रहती है क्लियर फोन नंबर 2 वाकवा में। So congratulations to you, Umay Tufani from Clairfort number 2 Vakwa. You're winning 4 entry tickets and 1 food coupon. So congratulations to you, my dear, and thank you so much to all those jinhone participate kiya hai. Lekin only one lucky winner. So there is someone who's going to call you from the MBC aapko batane ke liye ki ID card lekar aana hai, apne sare coupons lekar jana hai. And well, thank you so much for participating.
1: You're listening to Radio Masti.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: बिल्कुल जी, 4:44 हो चुके हैं और अभी गानों की दुनिया से निकल के लेके जाएंगे स्ट्रेट अवे स्पोर्ट्स की दुनिया में हमारे स्पोर्ट्स गुरु अरविंद के साथ। गुड आफ्टरनून जी।
4: गुड आफ्टरनून आपको। गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। They say it's good going for Mauritian sports in Dino after successful Commonwealth Games. Tour de France में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, फिर Tour de la Réunion में Mauritius चैंपियन बना, फिर वॉलीबॉल, अभी वॉलीबॉल पड़ोसी मालेगास्का के यहाँ जाकर मालेगास्का को हराया अंडर 18 टीम में। सो गुड गोइंग, ऐसे ही लगे रहो। और मॉरिशस के जो एथलीट हैं उनको तो हम आली मोगिस के साथ हौसला बढ़ाएंगे ही, वेल डन, ब्रावो कहेंगे इन लोगों को। फिलहाल बात सो प्रीमियर लीग सीजन शुरू होने में बस 2 हफ्ते रह गए हैं और तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं खिलाड़ियों के लिग को लेकर, खासतौर पर ट्रांसफर लेटेस्ट। लिवरपूल क्लोजिंग ऑन द लोन साइनिंग ऑफ बार्सिलोना डिफेंडर रोनाल्ड ओयो। वैसे लिवरपूल को देखा डीड्स यूनाइटेड के खिलाफ, साथ साथ में मोनाको के खिलाफ डिफेंस में छेद है, इसीलिए डिफेंस को मजबूत करना जरूरी है और इसमें एक्सपीरियंस लाएगा रोनाल्ड ओरियो जो स्पेन के लिए खेल चुका है और बार्सिलोना का कप्तान भी रह चुका है। इधर क्रिस्टल पैलेस और एवर्टन एक स्वैप डील करना चाहते हैं ब्रेंडन जॉनसन और ड्वाइट मैकनील के लिए। कोमो ने चेल्सी के ट्रेवो चालोबा को साइन कर दिया। अब देखना है कि चेल्सी और किन किन खिलाड़ियों को बेचेगा क्योंकि स्क्वाड साइज को कम करना होगा। इधर एस्टन विला एंड्रिक को साइन करना चाहता है, ब्राजील का खिलाड़ी लोन पर, जबकि हैरी केन बायर्न म्यूनिख के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है। फुटबॉल फिक्स्चर्स की बात करें तो आज कुछ खास है नहीं। इंग्लिश लीग कप के फर्स्ट राउंड का एक मैच है प्लाइमूथ और एक्सेटर के बीच। कल काफी सीरियस मैटर, यूईएफए चैंपियंस लीग थर्ड

0: qualifying round. Mais Lyon Sport à Prague return leg wali match unge NEC Olympiakos Bodo Glimt NEC ye kal ke match hai phir friendly match bhi kafi khele jayenge in sab par aapko samay samay par updates denge UEFA Europa League mein bhi kal match hai Iberia Larne aur UEFA Conference League mein bhi do match Apollon Brann CSK 1948 Panathinaikos ye Europe ke match honge club friendlies mein kal Juventus Palermo और FA Cup के मैच भी रखे गए हैं so keep updated आपको हम और खबरें देते रहेंगे जो friendly match खेले जा रहे हैं क्रिकेट के अपकमिंग फिक्स्चर्स टीम इंडिया श्रीलंका में हैं वार्म अप मैच में कल उनकी जीत हुई अब पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा 15 अगस्त को उसके बाद 23 अगस्त को दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो में उसके बाद भारतीय टीम वन डे इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी होम सीरीज है वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम जो तैयार हो रही है फॉर द वर्ल्ड कप जो नए नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जाएगा सो इसमें देखा जाएगा कि हु विल मेक द स्क्वाड सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड आई कैच यू टुमारो मॉर्निंग टिल देन हमारे साथ देते रहिए ऑन रेडियो मस्ती R&2 टेक केयर बाय बाय
1: थैंक यू सो मच अरविंद जी
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
4: RM2.

गाड़ी चलाना मेंटेन डिस्टेंस बेल्ट पहनना ना भूले मोबाइल को जरा दूर रखे एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन एंड ऑफकोर्स ये अगला गाना स्पेशली टू ऑल दोज जो बसेस में बैठे हैं हेलो सारे पैसेंजर्स को हमारा प्यार भरा प्रणाम एंड अ बिग हाई गोज टू कंडक्टर्स एंड ड्राइवर्स एज वेल.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2 जगाती है कयामत कोई।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: स्टूडियो की घड़ी में 5:12 हो चुके हैं. सो वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर रफ्तार वाइब्स, जहां पे गिनी लेके जाती है ऑन द फिल्मी राइड्स एवरी आफ्टरनून 4 से लेकर 7 तक. आई रियली होप दैट एवरीवन इज हैविंग अ गुड टाइम. ज्यादा हेक्टिक नहीं था आपका दिन, क्योंकि आई नो वीकेंड के बाद जब भी मंडेज आते हैं ना, सो मंडे ब्लूज तो सभी को फील होता है. बट स्टिल व्हेन यू हैव द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन ऑल टू रेडियो मस्ती, तो फिकर नॉट, हम है ना साथ देने के लिए. तो बस ऐसे ही साथ देते रहे और खूबसूरत गानों का आप मजा लेते जाइए. Or 549-9194 pair. Keep on sending me your dedications or drive carefully. Here we go. This one goes out to you.

वैसे अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो टेंशन नहीं लेने का क्योंकि आई हैव गॉट यू द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ताकि आप मुस्कुरा सके और अपना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट कर सके. बिल्कुल जी, आज मंडे है तो मंडे आफ्टरनून को गिनीशा साथ दे रही है ऑन ऑरेंज रेडियो मस्ती इन दिस ब्यूटीफुल शाम. दैट्स योर रफ्तार वाइब्स एंड इट्स योर फिल्मी राइड्स. और अगला गाना हम लेकर आए हैं खासकर उन तमाम सुनने वालों के लिए जो फिलहाल हमारा साथ दे रहे हैं एंड वर्किंग एट द सेम टाइम. सो कुआश टू यू एंड अविश के लिए और बेटिया मेघना जोशाना के लिए. और वो बोलते हैं खाना तो हम बना रहे हैं. इट्स डिया एंड लिसनिंग टू आर एम टू रेडियो मिसियन. बच्चे जो है टीवी देख रहे हैं फ्रॉम पोम्बला बट किचन में आप रेडियो सुनते सुनते खाना बना रहे हो. दैट्स सो स्वीट. सो कुहाश टू यू माय ब्यूटीफुल एंड हे गिनेश. यस, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है एंड अगला गाना चुनरी चुनरी अगर हो सके कोशिश करेंगे आपके लिए. यले शाम फ्रॉम सुरीनाम और आपके फैमिलीज के नाम आयशा हिरिया एंड आपके हस्बैंड के लिए गुलशन और आपके मामा गायत्री पापा धन Raj or Gulla ke liye and mama is saying that she's missing the biryani he cooked. Oh ho, to wo biryani bhi banate hain. That's so sweet. To ye agla gana jo hai aapke liye Lalita Jitanji of Laventure wo bolte hain every song sa rocking this afternoon. Thank you so much my dear. To chaliye ji, get ready for this one. Lekar aaye hain aap logon ke liye Niraj Sridhar ki aawaz mein Bhul Bhulaiya. Let's feel the vibes. Here we go. Let's hit it.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: बिल्कुल जी, 5:40 हो चुके हैं। इट्स टाइम फॉर योर लेटेस्ट फैशन टिप्स। और वैसे अगर आप आजकल पार्टीज बहुत ही ज़्यादा अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ पार्टी ड्रेसेस के लिए एक सिंपल फैशन टिप हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। अगर ड्रेस ऑलरेडी ग्लैमरस है तो एक्सेसरीज मिनिमल आप रखो। स्टेटमेंट इयररिंग्स, स्लीक हील्स इनफ होते हैं। आउटफिट को क्लासी रखने के लिए एक ही चीज़ को हाईलाइट करो, जैसे कि ड्रेस को, मेकअप या सिर्फ ज्वेलरी को।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

टाइम बीटा चला जा रहे हैं 5:50 हो चुके हैं तो हियर वी गो ऑन 5499124 पर वी हैव गॉट योर डेडिकेशंस यानी कि बड़े प्यार से जो लिख के आपने भेजा है लेट्स चेक इट आउट टुगेदर और अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर यू जिसने बोला है कि बहुत ही नाइस प्रोग्राम है एज यूजुअल विशिंग लवली रागिनी हे रागिनी का जन्मदिन है आज सो रागिनी जी विशिंग यू अ मैजिकल बर्थडे एंड द बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम बेटी नेहा बेटा रितेश एंड पति देव ऋषि देव फ्रॉम क्यूपिप एंड टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज I just want to wish you a magical one.

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, हैप्पी बर्थडे टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज टुडे ऑन अ मंडे 10th ऑफ अगस्त 2026। लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू माय डियर। एंड चलिए जी, ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर यू स्पेशली हमारी प्यारी शहनाज जोगी के लिए, एंड शी इज फ्रॉम रिविया जुरापा, एंड ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो ये अगला गाना स्पेशली फॉर यू एंड टू ऑल ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल जो इस वक्त किचन में घुस चुके हैं और ऑलरेडी कुकिंग। सो कुराज टू यू, एंड आई जस्ट वांट टू विश हैप्पी 8th बर्थडे टू प्रिंसेस Iyanshi Raymond Lewis of Gambé. So happy birthday to you, Princess Iyanshi, and best wishes coming from Darren. Shweta Ravish Prushalavishana Padu families.

0: Thank you so much. Sade Nikile on Radio Masti. तो चले जी थोड़ी देर बाद हम बढ़ेंगे 6 बजे की समाचारों की ओर और उसके बाद गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेडियो मस्ती.
1: You're listening to Radio Masti.

सोमवार 10 अगस्त 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों का सुझाव है कि मॉरिशस को बारिश का पानी जमा करने और उसके भंडारण के लिए छोटे जलाशय बनाने जैसी ठोस उपायों पर विचार करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एल नीनो की स्थिति के और गंभीर होने के साथ देश में मौजूदा बारिश की कमी में अगले अक्टूबर महीने तक कोई सुधार की गुंजाइश नहीं। देश के ऊर्जा संयंत्रों के लिए बायोमास की सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और भंडारण के संचालन के वास्ते कुछ महीनों में मॉरिशस बायोमास फ्यूल एग्रीगेशन लिमिटेड की लॉन्चिंग की जाएगी। मकसद है राष्ट्रीय बायोमास फ्रेमवर्क की सिफारिशों के अनुसार कोयले का इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म करने की रणनीति लागू करने में मदद करना। पिछले साल स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाओं में मॉरिशस के छात्र 9 विषयों में दुनिया भर में प्रथम स्थान पर रहे। इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए आज एक खास समारोह का आयोजन हुआ। मॉरिशस के दौरे पर आए हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि ने इस बात की पुष्टि की कि मॉरिशन छात्र दुनिया के बेहतरीन छात्रों को कड़ी टक्कर देते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि मंजूरी प्राप्त इबोला वैक्सीन एवेबो के मूल्यांकन को क्लिनिकल ट्रायल के दायरे में प्राथमिकता दी जाए। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इस वायरस के प्रकोप से निपटने की कोशिशों में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम

0: विस्तार देते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। देश के ऊर्जा संयंत्रों के लिए बायोमास के सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और भंडारण के संचालन के वास्ते कुछ महीनों में मॉरिशस बायोमास फ्यूल एग्रीगेशन लिमिटेड की लॉन्चिंग की जाएगी। मकसद है राष्ट्रीय बायोमास फ्रेमवर्क की सिफारिशों के अनुसार कोयले का इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म करने की रणनीति लागू करने में मदद करना। शुरुआती स्तर पर सरकार बिजली पैदावार में लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल 10% से बढ़ाकर 15% करने की योजना बना रही है। लिस्कालिए में स्थित ओमनिकेन पावर प्लांट पहले से ही ग्रीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बदलाव में शामिल हो गया है। माधवी जागौनाथ, गीता सुनारायण।
1: गन्ने की कटाई का मौसम पूरे जोरों पर है, ऐसे में बिजली केंद्रों को बगास से तैयार होने वाली बायोमास का इस्तेमाल बढ़ाकर बिजली उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। इनमें लिस्कालिए स्थित ओमनिकेन लाबाराक बिजली केंद्र भी शामिल है। इसके जनरल मैनेजर ऋषि कपूर कहते हैं,
2: En termes de pourcentage, je dirais sur notre production annuelle.
1: वार्षिक उत्पादन 550 गीगावाट के करीब है, 82 गीगावाट बगास से आता है और बाकी कोयले से। हर साल ये बिजली केंद्र बिजली उत्पादन के लिए 2,00,000 टन से ज्यादा कोयला जलाता है। कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए ओमनिकेन ने 4 साल पहले अपने ऊर्जा मिशन में लकड़ी के चिप्स का इस्तेमाल शुरू किया।
2: Avec l'appui donc du gouvernement de la CEB.
1: सरकार और सीबी के सहयोग से कई इंसेंटिव्स कायम किए गए हैं। हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमने लकड़ी के मिश्रण का प्रयोग शुरू किया है। कोयले से धीरे धीरे बाहर निकलने की ये रणनीति राष्ट्रीय बायोमास विकास नीति के तहत भी सुझाई गई है। सीबी के एक्टिंग सीनियर इंजीनियर जनेश किस्तु कहते हैं, कंसल्टेंट्स ने जांच पूरी कर ली है। ये देखा गया है कि बिजली केंद्रों में बदलाव लाए जा सकते हैं। एक नए स्टेशन से ये ज्यादा सस्ता है। इसे बदलने के बाद 4 तरह के बायोमास होंगे, स्थानीय लकड़ी और आयात की जाने वाली लकड़ी के मिश्रण, गन्ने के टुकड़े और बागास। इसी रणनीति का उद्देश्य आयात की जाने वाली लकड़ी के चिप्स का इस्तेमाल बढ़ाकर कोयले की खपत कम करना है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बायोमास फिलहाल कुल जरूरत का केवल 20% ही पूरा कर पाता है।
3: Nous procédons dans deux phases. Nous finissons mettre en place une stratégie d'importation du bois. Nous commençons à importer du bois à la hauteur.
1: ये 2 चरणों में होगा। लकड़ी आयात करने की नीति कायम की जाएगी। 10-15% लकड़ियों का आयात किया जाएगा। दूसरे चरण में सभी बिजली केंद्रों को बदलेंगे और मॉरिशस बायोमास फ्यूअल एग्रीगेशन लिमिटेड संस्था की स्थापना की जाएगी, जो बायोमास के आयात के लिए समर्पित होगी। फिलहाल सभी संबद्ध पक्षों के साथ बातचीत की जा रही है। 2035 तक ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने का सरकार का लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी। छोटे टापू देशों जैसे मॉरिशस के लिए ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण चुनौती है।
0: श्रमिक संघ एफटीयू के नेगोशिएटर आत्मा शांतु ने आज से पोर्ट लुइस की कंपनी गार्डन में भूख हड़ताल शुरू की है। वे सामूहिक नेगोशिएशंस के लिए श्रमिक संघों से मिलने में कुछ निजी कंपनियों की हिचकिचाहट की आलोचना कर रही है। इस सिलसिले में आत्मा शांतु एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट पर फिर से गौर किए जाने की मांग कर रही है। एक बार फिर माधवी जगन्नाथ, गीता नारायण।
1: आत्मा शांतु ने इस सोमवार 10 अगस्त को सुबह 11 बजे के कुछ ही समय बाद पोर्ट लुइस के कंपनी बाग में भूख हड़ताल शुरू कर दी। फेडरेशन डी ट्रैवायर यूनी के वार्ताकार ने प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनियों द्वारा सामूहिक बातचीत से इनकार किए जाने की निंदा की है।
4: Gagne augmentation salaire. Je gagne, ben mérite une crise. 3/4 du temps, ben travailleur pénalisé. Je empêche le syndicat pour faire réunion sur le site de travail selon la législation. Mentalité de jour en jour a fait changer dans le secteur du privé. Bien que le gouvernement révise ça de la loi là, Employment Relations Act et Workers' Rights Act.
1: आत्मा शांतो के इस कदम को मॉरिशस लिबर कांग्रेस

0: का भी समर्थन प्राप्त हैं। हनीफ बेगन चाहते हैं कि ट्रेड यूनियन आंदोलन को फिर से मजबूत किया जाए ताकि कामगारों के अधिकारों की बेहतर तरीके से रक्षा की जा सके।
1: संचालन को लेकर कुछ दिक्कतों के बाद फिर से गठित काउंसिल ऑफ यूनियंस अब एक नई शुरुआत करना चाहती है। पोर्ट लुइस में आज जीएसओआ के कार्यालय में लगी एक बैठक के दौरान नई संचालक टीम ने ट्रेड यूनियनों के बीच एकता मजबूत करने और सरकार के साथ बातचीत में कर्मचारियों की आवाज़ को ज़्यादा अहमियत दिलाने का उद्देश्य प्रस्तुत किया। संताना पोंसिनो की रिपोर्ट पर गीता सोरान का विवरण।
2: कई वर्षों तक कामकाज में आई मुश्किलों के बाद अब कोंसेई दिसेंजी का एक नई शुरुआत करना चाहता है। इस ट्रेड यूनियन संस्था ने नई टीम का गठन किया है और इस मंच को फिर से सक्रिय करने का इरादा जताया है, जिसमें कई फेडरेशंस और ट्रेड यूनियन संगठन शामिल हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय को मजबूत करना और ट्रेड यूनियन आंदोलन को ज्यादा एकजुट होकर अपनी बात रखने में सक्षम बनाना है।
3: Penser tout grand changement qui est bien fait, il est bien fait avec les stakeholders, les syndicalistes. Parce que, comme on nous réitérer encore, nous pas against, nous pas contre la réforme, nous accepter la réforme. C'est ma réforme bien fait avec les syndicats. Et il y a beaucoup d'affaires là-dedans qui ne peuvent pas faire réforme, et il y a des affaires positives aussi là-dedans. Le conseil des syndicats est là pour soutenir tout les actions des syndicats.
2: नई टीम उन बड़े मुद्दों पर होने वाली चर्चाओं में भी फिर से अपनी भूमिका मजबूत करना चाहती है जो कामगारों से जुड़े हैं। ट्रेड यूनियनों का खास तौर पर कहना है कि उनके अनुसार किसी भी सुधार को सामाजिक बातचीत और कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के जरिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस बदलाव के साथ कोंसेई दिसेंजी का अपने काम को नई गति देना और ट्रेड यूनियन आंदोलन के साझा मंच के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहता है।
1: मॉरिशस अभी बारिश की कमी का सामना कर रहा है और आने वाले महीनों में भी इसी कमी के पूरी होने के कम ही आसार दिख रहे हैं। ऋतु विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि अगले अक्टूबर महीने तक बारिश सामान्य से कम होगी क्योंकि एलनीनो की स्थिति के और गंभीर होने की आशंका है। जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों का सुझाव है कि मॉरिशस को बारिश का पानी जमा करने और उसके भंडारण के लिए छोटे जलाशय बनाने जैसे ठोस उपायों का विचार करना चाहिए। मॉरिशस के दो विशेषज्ञ डॉक्टर, उत्कृष्ट पेशेवर अनुभव और एक साझा लक्ष्य, मॉरिशस में नेत्र चिकित्सा को और आगे बढ़ाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आंखों की बीमारियों की जांच, ग्लूकोमा के इलाज में नई टेक्निक, अत्याधुनिक सर्जिकल टेक्निकें और विदेशों से और विशेषज्ञ डॉक्टरों को मॉरिशस बुलाने की पहल, ऐसे कई प्रस्ताव आज दोपहर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के सामने रखे गए। दोनों विशेषज्ञों ने पोर्ट लुइस की ट्रेजरी इमारत में प्रधानमंत्री कार्यालय में से मुलाकात की। फाइनेंस बिल और पेंशन सुधार आज दोपहर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल और प्लेटफॉर्म कोमे सेंसिकाल के बीच बैठक के मुख्य मुद्दे रहे। ये बैठक शातोजुरेजी में हुई। ट्रेड यूनियनों ने मांग की है कि फाइनेंस बिल को दोबारा संसद में सामने पेश कर उस पर नए सिरे से विचार किया जाए। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने ट्रेड यूनियनों की चिंताओं और उनके सुझावों को संज्ञा में लिया है। पिछले साल स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाओं में मॉरिशस के छात्र 9 विषयों में दुनिया भर में प्रथम स्थान पर रहे। इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट ने एमजीआई मोका में आज एक खास समारोह का आयोजन किया। मॉरिशस के दौरे पर आए हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि ने इस बात की पुष्टि की कि मॉरिशन छात्र दुनिया के बेहतरीन छात्रों को कड़ी टक्कर देते हैं। इस हफ्ते राष्ट्रीय सभा में यूथ पार्लियामेंट का 5वां संस्करण लगेगा। इसमें शामिल होने वाले 76 प्रतिभागियों ने आज सुबह राष्ट्रीय सभा की स्पीकर की अध्यक्षता में एक ट्रेनिंग सत्र में भाग लिया। उद्घाटन के दौरान विपक्ष नेता और कई सांसद उपस्थित हुए। यूथ पार्लियामेंट का मकसद है नौजवानों को संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित कराना और उनकी बोलने की प्रतिभाएं बेहतर करना, साथ ही उन्हें लोकतंत्र और शासन के सिद्धांतों की बेहतर समझ भी प्रदान करना। अनावेल वुल्वे, याचना मिश्रा।
4: इनकी उम्र 14 से 23 साल के बीच है और एक सत्र के लिए ये प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद की भूमिका निभाने जा रहे हैं। सांसदों की भूमिका में ये सभी राष्ट्रसभा में अपनी जगह लेते ही
5: well,

0: अपनी आवाज़ बुलंद कर दें, अपने विचारों और मान्यताओं का बचाव कर दें और सबसे बढ़कर कानून बनाने वालों की भूमिका को करीब से समझने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। मुझे राजनीति का शौक है। मेरा मानना है कि युवाओं की आवाज़, उनकी राय जरूरी है क्योंकि ये देश हमारा भी है। ये हमारे लिए एक मंच है अपनी राय देने का, मॉरिशस को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए। हमेशा से राजनीति में मेरी दिलचस्पी रही है। नौजवानों को इस मंच के जरिए ये मौका मिल रहा है। सभी युवतियों को मैं प्रोत्साहित कर रही हूँ, उनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। जी हाँ, भले ही इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन युवाओं की राजनीति में आज भी दिलचस्पी है। इसका प्रमाण है लगभग 400 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 76 युवाओं का चयन यूथ पार्लियामेंट के 5वें संस्करण में भाग लेने के लिए किया गया। ये अनुभव उन्हें न केवल संसदीय प्रक्रिया को करीब से जानने का अवसर देगा, बल्कि उन्हें बहस करने, अपने विचारों का मजबूती से समर्थन करने और हमारे लोकतंत्र के काम करने के तरीके को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।
1: Quand ils sont chez nous, surtout assis dans l'hémicycle, ils sont déjà dans leur tête.
0: यहाँ बैठकर ही वे जान गए हैं कि उन्हें कौन सी भूमिका निभानी है। आशा यही है कि वे अपनी सभी प्रतिभाएं दिखाएंगे और मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ राजनीति को भी अपनाएंगे। 13 और 14 अगस्त को हमारे युवा सांसद यूथ पार्लियामेंट के सत्रों में भाग लेंगे, लेकिन सदन में अपनी बात रखने से पहले उन्हें पूरी तैयारी करनी होगी। इसके लिए मेंटर्स के मार्गदर्शन के साथ उन्हें संसदीय कार्यवाही और प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। इनमें पिछले संस्करण के प्रतिभागी और वास्तविक सांसद भी शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को संसद के कामकाज को समझने के लिए जरूरी जानकारी और अनुभव देना है और सबसे बढ़कर युवाओं की आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाने का अवसर देना है।
2: इस साल के प्रथम 6 महीनों के दौरान नेशनल कैंसर सेंटर में कैंसर के 1000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। संकेत स्पष्ट है, ऑर्गन में कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? हेरिडिटरी, अस्वस्थ जीवन शैली या पश्चिमी जीवन शैली जिसमें फास्ट फूड का ज्यादा सेवन शामिल है या फिर ज्यादा कीटनाशक वाले उत्पादों का इस्तेमाल। विशेषज्ञों के अनुसार ये सभी मोर्चनों में अलग अलग तरह से कैंसर की वजह बन रहे हैं। और इसी के साथ हमारी सहयोगी ने उनकी टीम ने नेशनल कैंसर सेंटर का दौरा किया, जहां फरवरी 2025 से अब तक कैंसर से जुड़ी 600 से ज़्यादा सर्जरीज की जा चुकी हैं। स्थानीय कारीगरी को बढ़ावा देने के साथ साथ परंपराओं को आगे बढ़ाना। 15 सितंबर को मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी उत्सव से पहले लगभग 50 लोगों ने भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां बनाने की एक कार्यशाला में भाग लिया। मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट की तरफ से आयोजित इस पहल का मकसद मूर्ति बनाने की कला और मराठी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना रहा। इस पर कृष्ण सिचा की रिपोर्ट पर गीता सोरेन का विवरण।
3: हाथों में मिट्टी लेकर सुबह से ही इन प्रतिमाओं को आकार देने का काम जारी रहा। धीरे धीरे हाथों के हुनर में निखार आता है और मिट्टी से आकृतियां उभरने लगती हैं। इलियाना पहली बार इस तरह की कार्यशाला में भगवान गणेश जी की प्रतिमा बना रही हैं। मिट्टी से काम करना आसान नहीं है। एक मूर्ति में कई छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। वहीं छोटे कियान दूसरी बार इस तरह की कार्यशाला में हिस्सा ले रहे हैं। गणेश जी की मूर्ति बनाने में उनके पिता भी उनका साथ दे रहे हैं। इसे बना सकते हैं, इस बार अंदर से बाती लगाए हैं। पहले से सीखना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। बाद में मैं खुद अपनी मूर्ति बना सकता हूँ और अपने यहाँ पूजा कर सकता हूँ। 2 दिनों तक चली इस कार्यशाला में करीब 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए वर्षों का अनुभव रखने वाले कृष्ण अप्पा मौजूद रहे।
4: मूर्ति गणपति

0: सकता हूँ।
1: 50 वर्षों से गणपति की मूर्तियां बना रहा हूं। मैंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है। इस कार्यशाला में मैं इन लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट की ओर से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को खुद मूर्तियाँ बनाने का हुनर सिखाना और बाहर से आयात की जाने वाली मूर्तियों पर निर्भर

0: खाना चाहते हैं। मराठी संस्कृति के अन्य पहलुओं को भी सामने लाया गया, जिसमें झाकरी भी शामिल हैं। ये एक पारंपरिक नृत्य है जो उत्सव के दौरान किया जाता है। इसका उद्देश्य इन सांस्कृतिक परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि मंजूरी प्राप्त एबोला वैक्सीन एवेबो के मूल्यांकन को क्लिनिकल ट्रायल के दायरे में प्राथमिकता दी जाए। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इस वायरस के प्रकोप से निपटने की कोशिशों में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। और उधर जोरदार चक्रवाती तूफान डॉल्फिन ने आज पूर्वी चीन पर प्रहार किया। भले ही उसकी तीव्रता धीरे धीरे कम हो गई है, फिर भी उससे जुड़े बादलों के कारण काफी बारिश पड़ी है। सुरक्षा कारणों से वहां अलर्ट जारी किया गया है। बटे हैं अब मौसम संबंधी जानकारियों की ओर गीता सुनारायण के साथ।
0: हमारे इलाके पर सामान्य अस्थिर हवाओं का असर पड़ रहा है। आज रात बादल घिरे रहेंगे। पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। कल सुबह ऊंचे इलाकों और हवाई ढलानों पर बारिश होती रहेगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 18 और साहिली इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दोपहर बाद को पूर्व और ऊंचाइयों पर बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 24 और साहिली इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। पूर्व में 3.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में पूर्व और दक्षिण के समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:34 पर सूरज निकलेगा।

इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग मिला है और कंसल्ट पर हमारे सहयोगी लुडोविक का भी, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। मोसलमा ओकीदे रोजबेल में, मोसलमा ओकीदे रोजबेल में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रानी मरीराम पैदाशना बंधु अजने धर्मो के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे सोना नरीराम के घर रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 10 AM। आउट ऑफ लिविंग लेन रू कुवेंट दे लोरेट क्यूपिप रोड में, आउट ऑफ लिविंग लेन रू कुवेंट दे लोरेट क्यूपिप में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री फुल बिहारी निकित सिंह जिन्हें इंदर के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर रू कुवेंट दे लोरेट क्यूपिप रोड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 11 AM। Route 16, Providence, Cochimlitiamen, Route 16, Providence, Cochimlitiamen, Navasi Sal, ke 89 years old, ke Shivalaidon Kupama, jinhe Sami ke naam se log zyada jante the, ki mrityu ho gayi hai. Unki arthi, unki beti ke ghar kal subah 9:30 baje Brinda Kupama ke ghar Providence, Cochimlitiamen se uthakar antim sanskar ke liye Majin Kodemas ki shamshan bhumi le jayi jayegi. Commission tomorrow at 9:30 AM. Balzac Street, Bois-Marchand, Pamplemousses में 25 साल के 25 years old के श्री विदेशी क्रिस्टोफर अर्सन जिन्हें अर्सन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके घर Bois-Marchand, Pamplemousses से उठाकर सबसे पहले La Chapelle de Bois-Marchand गिरजाघर ले जाया जाएगी, फिर दफनाने के लिए Bois-Marchand का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुमोरो एट 2:30 PM। अलीगढ़ मेबर्ग में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मुनियामा वानापिली आपिया जिन पैदाशिना लचेगादू और जिन्हें वीना के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके दामाद विश्वानंद रामाना के घर मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बोलेन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 11 AM। डॉक्टर पेपे स्ट्रीट बुबा

0: समय डॉक्टर पिपेन स्ट्रीट बुबासा में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री लक्ष्मी विजय सुंदयाल, श्री लक्ष्मी विजय की सुंदयाल जिन्हें शेखर के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2:30 बजे ला शपेल ऑदों दे मुगा पुचित रविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.

0: To all those who are driving right now, drive carefully. To all those who are working, courage to you. और जो घर पे हैं, आप 5-10 मिनट बैठ जाइए और इस गाने को एंजॉय कर लीजिए ऑन रेडियो मस्ती.
1: You're listening to

0: जहां दोस्तों हम भी थोड़े से दीवाने हो चुके हैं इस गाने को सुनने के बाद, और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे हर एक गीत को आप सुने तो आपका मन थोड़ा सा और जोर से धड़के और आपको थोड़ा सा और प्यार हो जाए। वेल 7:08 हो चुके हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल मंडे इवनिंग। मंडे को सब लोग ज़्यादा थके हारे घर वापस आते हैं। आई नो वीकेंड के बाद इट्स नॉट ईजी अपने रूटीन को फिर से चलाने के लिए, और पूरा वीक तो आपके सामने बाकी है, लेकिन आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 2 घंटे का ये म्यूज़िकल कारवां, जहाँ पर आपको मौका मिलता है टू सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द कूल म्यूज़िक ऑन द वेव्स ऑफ RM2, जहाँ पर आपके मैसेजेस को भी हम वेलकम करते हैं। एक छोटा सा हम सेगमेंट रखते हैं हमारे लिसनर्स को पैम्पर करने के लिए, तो चलिए आपके मैसेजेस का तो हम इंतज़ार करेंगे ही। ऑन 5499-1294 इज़ द मैजिकल नंबर जहाँ पर आपको अपने मैसेजेस ड्रॉप इन करना है और हमें बताना है कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड, आप क्या कुछ कर रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, किचन में अभी तक खाना बना रहे हैं, या फिर आप काम पर हैं और आपका नाइट शिफ्ट शुरू हो चुका है, मे बी आप अभी ड्राइव करके घर वापस जा रहे हैं, तो बस जो भी आपका रूटीन है हमें इंक्लूड करने के लिए थैंक यू सो मच। और बस साथ साथ मिलकर चलेंगे और साथ साथ मिलकर हर एक फीलिंग्स को ऐसे ही एक्सप्रेस करते रहेंगे। ऑन 5499-1294 डोंट फॉरगेट इट्स योर इवनिंग लाउंज, जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM।
1: RM2 Radio Musti.
2: Paré pour plus grand festival shopping, Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, powered by SBI, ML et LIC Mauritius, point a lieu dans SBI Sissipai tous les jours à partir du 12 août jusqu'à 16 août de 10h à Nevers-Soir. Point a shopping avec ban exposant local et international, food festival, fashion show, magic show et beaucoup les autres attractions. Utsav, India Mauritius Shopping Carnival du 12 au 16 août à SBI Sissipai, organized by Eventworks and managed by Rajasthan Works Limited.
1: RM2 Radio Musti
3: Evening Lounge.
4: Evening Lounge.
1: RM2
3: Radio Musti.

मुझे खुद से एक वादा कर लीजिए कि किसी के चले जाने के बाद आप मर मिटने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है कि कभी कभी खुद के बारे में भी सोचना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आपको शुक्रिया उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त जुड़ चुके हैं RM2 के साथ, और चाहे आप काम कर रहे हैं, घर पर हैं, आराम फरमा रहे हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोग बस जुड़े हुए हैं अपने नंबर वन रेडियो स्टेशन के साथ एंड लिसनिंग, एंड एट द सेम टाइम आपके जब अप्रिशिएशन वाले मैसेजेस आते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर अगला गाना ख़ास तौर से हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली आदर्श रविशु निलंबा के लिए। मेनी मेनी हैप्पी यूटेंस ऑफ द डे टू आदर्श रविशु निलंबा, 18 ईयर्स ऑलरेडी, दैट्स अ वेरी स्पेशल एज। बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम मामा अंजू, पापा रजय, भाई हैं आदित्य, नानी, मामू, आश, पवन, मासी, आपके तमाम कजिन्स की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार आदर्श। साथ में लक्ष्मण फैमिली ऑफ बिल विद्या की तरफ से भी आपको लोथ एंड लोथ ऑफ गुड विशेज। एंड चलिए यहाँ पर आप कहते हैं गुड इवनिंग दीदी दिव्या, नाइस सिलेक्शन ऑन रेडियो मस्ती, थैंक यू सो मच। स्वीट बॉय यलेश शाम ऑफ सुरीनाम कनेक्टर है हमारे साथ। अभी के लिए चुनरी चुनरी वाला गाना इम्पॉसिबल है चलाने के लिए, क्योंकि बस प्यार के गाने हम चला रहे हैं, कुछ कूल म्यूजिक तराने। क्या है ना कि वीकडेज के दौरान लोग थके हारे घर वापस आते हैं तो उनको इतना भी शोर शराबा वाला गाना पसंद नहीं होता है। तो चलिए अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू यलेश, एंड साथ में वुड लाइक टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर श्याम तगाली, 57 ईयर्स ऑलरेडी। मिस्टर श्याम RM2 रेडियो मस्ती की तरफ से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप हैं मोस अलमोस एतान्द्रेसे एंड विशेज कमिंग फ्रॉम वाइफ, सभी तगाली फैमिली और आपके दोस्तों की तरफ से फ्रॉम मोस अलमोस।

0: ओके एंड चलिए एक बात तो आपसे कहनी ही है कि आप लिवरपूल के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन ये लाइन हमसे बोला गया है कहने के लिए, तो आप बिल्कुल हम पे नाराज ना होना, इट्स योर स्पेशल डे, लेकिन फिर भी हमसे कहा गया है कि लिवरपूल की कुमात दे दिया है मोनाको ने कल, यस 2-3 से, और आपको वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अब इस लाइन से शायद आप थोड़े डिस्टर्ब होंगे, तो कोई बात नहीं, आपको चेयर अप कराने के लिए वी हैव द नेक्स्ट गाना। सो वंस अगेन मिस्टर श्याम तगाली, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: बेशक शायद आप किसी से प्यार करती होंगी और उनको याद करते करते बस कभी कभी मैसेजेस भेजने का मौका मिल जाता है, लेकिन आपका दिमाग आपसे कहता है कि मैं क्यों भेजूं, उसका इंतज़ार करूं एंड अगर मैसेज ना आए तब भी ना भेजूं। लेकिन ऐसा करते करते क्या होता है, आपका ईगो आपके रिलेशनशिप में सामने आ जाता है और ऐसे में आप हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं एंड लिटिल डू यू रियलाइज़ कि जब प्यार होता है तो दो तरफ से ही ये जो मेहनत है, जो एफर्ट है, वो रंग लाती है। कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो इक्वल इक्वल साइड में अगर इक्वल एफर्ट हो तो खूबसूरत रिलेशनशिप हो जाता है और साथ में आपकी ज़िंदगी भी बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। सो चलिए, आई जस्ट होप कि आपको यह एहसास हो कि प्यार में थोड़ा बहुत जो स्टेप बढ़ाना होता है आपकी तरफ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम दूसरे का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते करते ऐसे ही बस वक्त बीतता जाता है। बदले में कुछ प्यार एक्सपेक्ट करना अच्छी बात होती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ साथ आप ये भूल जाते हैं कि शायद दूसरे साइड से भी यही वाली जज्बात उभर कर सामने आ रहा है। और बस उनको भी एहसास दिलाइए कि आप भी अपनी तरफ से कुछ स्टेप बढ़ा रहे हैं और प्यार की तरफ अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं ना तो प्यार आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। 7:39 ऑलरेडी टोल्ड दोज हैविंग देयर मील राइट नाउ। अगर आप अपना डिनर ले रहे हैं तो आपको हम बहुत ही प्यार से विश करेंगे बन अपेची शुभ आहार। चलिए हमारा साथ देते रहिएगा। और वैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल एक्सरसाइज होता है बस अपने दिमाग को एकदम फ्रेम करना, और इट्स वेरी वेरी टफ कि आप घर वापस आएँ और कुछ भी ना सोचें आफ्टर हैविंग अ वेरी टफ डे। ऐसा होता है कि कभी कभी काम में मूड ख़राब हो जाता है और इसी मूड के साथ आप घर वापस आ जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो चलिए, आई जस्ट होप कि जब आप अपने घर के चौकट के उस पार आएंगे ना तो आप बस अपने फैमिली मेम्बर्स के स्माइलिंग फेसेस को देख कर आप सब कुछ भुला देंगे, एंड भुलाना भी चाहिए। काम और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बाहर ही रखना चाहिए, पर्सनल चीज़ों को आप घर के अंदर ही रखें। एंड इट्स वेरी वेरी nice to see family members eating and communicating together. ये तो हमेशा हम कहते हैं, अगर आप अपनी बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आपको बस एक दो मिनट के लिए या फिर 10-15 मिनट के लिए मोबाइल को साइड में रखना है और आपस में थोड़ी बातें करनी है। इससे आपका जो रिलेशन है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनता है।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: One of my favorites धड़क मूवी से लिया गया अजय गोगावले एंड श्रेया घोषाल की आवाज़ों में जो मेरी मंजिलों तक जाती हैं वो शायद आपके दिल की पुकार हैं और हमारे लिए तो हमारी मंजिल आपका प्यार है और आपको आपके प्यार तक पहुंचाना है. सो बस हमारी गीतों को सुनने के बाद किसी की याद आ रही है या फिर ऐसे ही किसी को एक ख़ास पैगाम भेजना चाहते हैं सो हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं ऑन द मैजिकल नंबर विच इज़ 5499-1294.

तो ये चाहते हैं कि आप वही करिए कि आप बेचैनियों को थाम लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे गाने हम चला रहे हैं जिनको सुनने के बाद दिल थोड़ा सा और बेचैन हो जाता है। चलिए थैंक यू सो मच आपके इतने खूबसूरत मैसेजेस के लिए। वैसे इस रश रश वाले टाइम में किसी को याद करके उनके लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल है, और ऐसे में आप लोग हमें याद करके यही साबित कर रहे हैं कि नोबडी इज़ रियली बिजी, बस वक्त वक्त की बात है और नज़रिए की बात है। अगर आप चाहे तो किसी के लिए आप एक मिनट भी निकाल सकते हैं, उनको मैसेज भेजने के लिए बस एक सेकंड ही लगता है, और इस एक सेकंड में जब भी कोई आपका मैसेज रिसीव करता है ना, बिलीव मी उनके होंठों पे एक स्माइल आ जाता है, और हम यही चाहते हैं यही वाइड एंड ब्रॉड स्माइल आपके चेहरे पर

0: पहुंचाए हमारे गीतों के जरिए. So thank you once again, दिल से आपको शुक्रिया to all those connected with us on the waves of Radio Masti. 8:09 हो चुके हैं. एक बार फिर से आपका हम वेलकम कर रहे हैं the second hour of your evening lounge, जहां पर दिव्या का साथ है till 9 PM. So जितने भी सारे लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों को हम यही कहेंगे कि एक बार फिर से दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि एक बार फिर से प्यार करने का वक्त आ चुका है.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musty.

0: संस्कार में बहुत सारे लोग वादे करते हैं, चांद तारे तोड़ने के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये सब किताबी बातें हैं या फिर फिल्मी डायलॉग्स हैं। अगर आप प्यार करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आप बस ये सोचें कि आप उनके चेहरे पर कैसे एक स्वीट स्माइल पहुँचा सकते हैं, एंड टू बी वेरी प्रैक्टिकल एक मैसेज आप भेज सकते हैं और उनको ज़्यादा वाइड एंड ब्रॉड स्माइल तभी आएंगे उनके चेहरे पर जब आप अपने डेडिकेशन RM2 रेडियो मस्ती पर भेजेंगे और वो लोग अपना नाम सुनेंगे और ज़्यादा हंसेंगे मुस्कुराएंगे। तो चलिए देर किस बात की, आपके मैसेजेस का हम इंतज़ार कर रहे हैं। इसको मैजिकल नंबर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके मैसेजेस जब आते हैं ना तो ऑटोमेटिकली जिसके लिए आप पैगाम भेजते हैं उनका नाम सुनकर वो लोग ऑटोमेटिकली इतना हंसते हैं कि खुद ब खुद ये एनवायरनमेंट या एटमोसफेयर मैजिकल हो ही जाता है। चलिए 8:28 कुछ और आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। हाई गुड इवनिंग रेडियो मस्ती टीम, वॉन्ट टू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर रानी श्वेता हुकुम अबुना कोई फ्रॉम हबी रोशन। वॉन्ट टू टेल हर दैट आई लव हर सो सो मच। थैंक यू सो मच आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए। करिश्मा के लिए अगला गाना, ऑल्सो वी हैव जान एंड जानू, और जानू का नाम है मोनू और अभी वैन ड्राइव कर रही है, तो चलिए ड्राइव सेफली एंड केयरफुली मोनू। एंड यहाँ पर किसी का मैसेज आया है, प्लीज प्ले लम्हा लम्हा फॉर माय फियांसे अक्षय। ये गाना हमारी अपकमिंग प्लेलिस्ट में जरूर शामिल है, कल के लिए मे बी आफ्टर टुमारो की प्लेलिस्ट में शामिल है, तो जरूर फिलहाल के लिए अगला गाना आपके नाम।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती।

0: You're listening to RM2 or Radio Masti.
1: फिलहाल के लिए सिचुएशन आपका ऐसा है कि काम से निकलते ही कुछ दूर चलते ही या फिर कुछ दूर ड्राइव करते ही रास्ते में है आपका घर और उस घर में आपके कुछ खूबसूरत फैमिली मेंबर्स हैं जो बहुत ही प्यार से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि दिन भर आप अपनों से मुलाकात नहीं करते हैं एंड उनका चेहरा कितना खिल जाता है जब वो आपको देखते हैं, इसलिए मूड को खूबसूरत और गुड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए टू ऑल दोज जो इस वक्त काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड यहाँ पर एक मैसेज आया है, हाई नमस्ते, प्लीज दरिके द नेक्स्ट गाना टू ऑल द डायलिसिस पेशेंट ऑफ एस एस ऑरन हॉस्पिटल लिसनिंग राइट नाउ। एंड आप लोग एम्बुलेंस में हैं एंड रिटर्निंग होम आफ्टर डायलिसिस फ्रॉम विक्रम। आई गेस आपका मैसेज यहाँ पर इनकम्प्लीट आया है। अगर आप अपना मैसेज फिर से हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो डू सेंड योर मैसेज ऑन व्हाट्सएप 5499-1294 नंबर है, बस आपको व्हाट्सएप पर हमें याद करना है। तो चलिए यहाँ पर जितने भी सारे लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: चलिए दोस्तों, इसी गाने के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. एंड जाते जाते यहाँ पर हम ये गाना एक बार फिर से डेडिकेट करेंगे मिस्टर विक्रम भुवन के लिए. आपका मैसेज एक्चुअली व्हाट्सएप पर हमें मिला, थैंक यू सो मच. आपका मैसेज एक बार फिर से आपने हम तक फॉरवर्ड किया. नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर ऑल डायलिसिस पेशेंट्स रिटर्निंग होम फ्रॉम डायलिसिस लिसनिंग टू रेडियो मस्ती. थैंक यू सो मच विक्रम जी एंड सभी एम्बुलेंस स्टाफ ऑफ SSRN हॉस्पिटल वर्किंग राइट नाउ. और MBC स्टाफ के लिए भी आप कहते हैं कि इट्स नॉट ईजी नाइट शिफ्ट करना हॉस्पिटल में. आई नो आप सभी कुंभों को हर्ष टोल दोज जो इस वक्त मेडिकल फील्ड में नाइट ड्यूटी कर रहे हैं. एंड आपके बारे में तो हमेशा हम सोचते रहते हैं. एंड चलिए, आई जस्ट होप कि बाकी गाने आपको हिम्मत देगी बस इस रात को गुजारने के लिए. एंड ड्यूटी मतलब वर्क इज़ वर्शिप, तो आपको बोंकुहार्ज. चलिए इसी के साथ इट्स अ टाइम फॉर दिव्या टू

गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे के बीच. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय.

नीतू की ओर से प्यार भरा नमस्कार प्रणाम विशिंग यू ऑल अ लवली इवनिंग माय डियर लिसनर्स कैसे हैं आप ठीक ठाक सो चले तीन घंटों के सुरीले सफर में सबका स्वागत है वो भी रात्रि के 12 बजे तक विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक व्हाटएवर यू माइट बी घर पर होंगे काम पर होंगे ड्यूटी पर हैं सबको बोंकुहाश एंड वी आर गोना हैव अ नाइस टाइम ऑल टुगेदर विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक

हमेशा कहते हैं जीना है तो खुल कर जियो, प्यार से जियो। तो चलिए, जिंदगी की असली खूबसूरती धन दौलत या बड़ी सफलता में नहीं, बल्कि उस प्यार में छुपी होती है जो हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को देते हैं, है ना? एक मुस्कान, एक मीठा शब्द और एक सच्ची दुआ किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। वैसे प्यार बांटने से कम कभी नहीं होता है, बल्कि और भी बढ़ता रहता है। That's why हर दिन किसी न किसी के जीवन में खुशी की एक छोटी सी वजह जरूर बनिए।

इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पद से नहीं बल्कि उसके व्यवहार माने कि बिहेवियर से होती है। विनम्रता हमें हर दिल के करीब ले जाती है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसमें उतनी ही ज्यादा नम्रता होती है। झुकने वाले पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है, सुना है ना? इसलिए हमेशा विनम्रता को अपनी ताकत बनाए।

दुनिया की हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अपने परिवार, दोस्तों, अपनों के साथ कुछ पल जरूर बिताएं। मोबाइल और दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा वक्त निकालकर रिश्तों को महसूस कीजिए। यही यादें जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बनती है।

दिन किसी एक व्यक्ति की मदद करने का संकल्प लीजिए अगर हो सके तो। हाँ, मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, एक अच्छी सलाह, एक हौसला बढ़ाने वाला शब्द या किसी की बात ध्यान से सुन लेना ही बहुत बड़ी मदद होती है। दया और करुणा इंसान को सच में महान बनाती है।

स्कूल है दोस्तों, और हर दिन एक नई क्लास। हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है ना? चाहे वो बच्चे हो बड़े हो, जब सीखना बंद हो जाता है तब विकास भी रुक जाता है। खुद को हर दिन कल से बेहतर बनाने की कोशिश ही सफल जीवन का राज है।

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.

वैसे जो व्यक्ति माफ करना जानता है वही असली रूप से मजबूत होता है। गिले शिकवे और नफरत सिर्फ मन को बोझिल बनाते हैं। माफी देना कमजोरी नहीं बल्कि एक बड़ा और पवित्र दिल होने की निशानी है।

थैंक यू सो मच वंस अगेन नीतू के हम सफर बनने के लिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स। वैसे बारिश की बूंदे, आजकल तो बारिश का समय है, कभी भी बारिश हो सकती है। सुबह की ताजी हवा, बच्चों की हंसी, माँ की दुआ और एक मधुर गीत, ये सब जिंदगी के अनमोल तोहफे हैं। खुश रहने के लिए हमेशा बड़े मौकों का इंतजार मत कीजिए, छोटी खुशियों को महसूस करना ही जीवन की असली कला है।

गाने ऐसे मस्त हो तो दिन क्या रात क्या बस हर पल खुशनसीब बन जाता है। लोग अक्सर आपके शब्द भूल जाते हैं लेकिन उन शब्दों से मिला एहसास कभी नहीं भूलते। इसलिए हमेशा प्यार सम्मान विनम्रता के साथ बात कीजिए। मीठी जुबान सबसे मुश्किल रास्तों को भी आसान बना देती है।

सफल बनना अच्छी बात है दोस्त, लेकिन इंसानियत खोना कभी भी सही नहीं। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है वही असली विजेता होता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ ऊपर उठना नहीं बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना होता है।

दोस्तों, हर सुबह उन सब के लिए शुक्रगुजार बनिए जो आपके पास हैं, आपके साथ हैं। जब हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तब कमियां छोटी और खुशियां

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

हमेशा कहते हैं ना कि सबूरी का फल मीठा होता है। हर समस्या का तुरंत हल नहीं मिलता, कभी कभी धैर्य और प्रेम ही सबसे बड़ा उत्तर होते हैं। गुस्से से बात उलझती है, जबकि शांत स्वभाव प्रेम से बड़े से बड़ा विवाद भी सुलझ सकता है।

देखते ही देखते वक्त कैसे निकल गया पता नहीं चला. ऑलरेडी इन द थर्ड आवर ऑफ योर लेट नाइट ग्रुप्स. तो बस दुनिया आपको आपकी संपत्ति से कुछ समय तक याद रखती है, लेकिन आपकी अच्छाई और विनम्रता को हमेशा याद रखेगी. ऐसा जीवन जिए कि लोग आपके नाम के साथ मुस्कान और दुआ भी याद करें.

जिस तरफ साफ पानी में आसमान साफ दिखाई देता है, उसी तरह साफ दिल में प्यार, दया और शांति अपने आप बस जाती है। ईर्ष्या, नफरत और अहंकार को छोड़कर सच्चाई और सादगी को अपनाइए, वही से बेहतर जीवन की शुरुआत होती है।

सो आज का ये खूबसूरत सफर लेट नाइट ग्रूव्स समाप्त हो चला। चलते चलते बस यही कहेंगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस उसे देखने की नजर होनी चाहिए। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर शाम हमें कुछ नया सिखा कर जाती है। That's why हर दिन प्यार बांटिए, विनम्रता से जिए, सबका सम्मान कीजिए और अपने दिल को दया और करुणा से भर दीजिए। याद रखें, दुनिया को बदलने का सबसे सुंदर तरीका है खुद को प्यार, नम्रता और अच्छाई भर लेना। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।